91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

इस वक्त आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के

91.2 MHz पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दोष शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

क्यानो नश मिलब तो मेगा हर्ट्स पर ए तुम्हा सारे दा अपना रेडियो गुंचन धर्मशाला कने श्रोताओ मैं आ तुम्हा दी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर होई हूँ कार्यक्रम लेकर ही माटी दी महक ता श्रोताओ कर देना अज दे कार्यक्रम दी शुरुआत इस प्यारे दे गीते कने तुम्हा सारे इं बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अखे तंदी।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तोहंदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहा सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी।

ये तो हम अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कने तो हाँ सारे इन्हें बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ इस वक्त तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना दे ना माटी दी महक जी श्रोताओ ता बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुन दे न कार्यक्रम दा अगला गीत तो हाँ सारे इये बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंडी।

ये तो हम अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओं तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कने तो हाँ सारे इन्हीं बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

मोहल्ला कहते हैं ना, रेडियो गुंजन धर्मशाला ते गणेश होताओ तो हाँ सारे ही इस वक्त कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक जी श्रोताओ ता बढ़ देना कार्यक्रम जो अगे कने सुन देना कार्यक्रम दा प्यारा दिया अगला गीत तो हाँ सारे ये बनी दिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने बंदी।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर। हर घर

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सचू ने
2: 5 YouTube वीडियो को लाइक करके 5 लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
2: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
2: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए। इटमीन्स ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
2: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं। क्या बात है यार।
3: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
2: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
3: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। कोई भी अजनबी अगर आपको ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करने के लिए कहें तो उसे बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें।

0: लेन देन ना करें और उनकी लालच भरी बातों में तो बिल्कुल ना फंसें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
1: अब उठो, देश के भाग जगाने हैं आपको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं आपको। अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है, अब ठान के स्वच्छता की ज्योत जागी है, स्वच्छता की ज्योत जागी है।

0: एचआईवी कभी न दूं। अगर आप मां बनने वाली हैं, तो एचआईवी टेस्ट जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में सलाह और एचआईवी टेस्ट मुफ्त है और गोपनीय भी। बच्चे को एचआईवी से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है।
1: एक कदम जिंदगी की ओर।
2: जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी फरेबी चाल चलनी है चल लो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए तो उस समय हैरान मत होना, उस समय परेशान मत होना, उस समय घबराना मत, क्योंकि जो आपने किया है, अगर छल किया है, कपट किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो कई गुना होकर आपके पास जब लौटेगा उस समय आश्चर्य मत करना, क्योंकि कर्म की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा। कर्म के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। जय बिहारी जी की।

0: अरे भैया ये आप सबने हेलमेट क्यों पहना है? ये तो बाइक वाला हेलमेट है ना।
1: अब आप नहीं पहन रहे तो सोचा हम ही पहन लेते हैं।
2: असलियत में हेलमेट किसको शोभा देता है ये तो सबको पता है। बाइक चलाते वक्त सर बचाएं, हेलमेट पहने। वेयर अ हेलमेट ऑलवेज बिकॉज हेलमेट सेव्स।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है। पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: सुबह से मुंह फुला के घूम रही है ये?
6: मेरी बीवी को पता चल गया मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
5: किससे?
6: वो मुझे भी नहीं पता, वो बस इसे ही पता है। रात को सपने में देखा था ना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 MHz पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

0: मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी।
1: आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

Special Pod.

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 MHz पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सचू ने
2: 5 यूट्यूब वीडियो को लाइक करके 5 लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा
2: है? हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
2: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मीन्स ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
2: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं। क्या बात है यार।
3: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
2: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
3: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। कोई भी अजनबी अगर आपको ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करने के लिए कहें तो उसे बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना पूरी जानकारी के कोई भी वित्तीय लेन देन ना करें और उनकी

0: आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
1: अब उठो, देश के भाग जगाने हैं आपको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं आपको। अब गोना गोना जगमग जगमग होना ही है, अब ठान के मुन स्वच्छता की ज्योत जागी रहे, स्वच्छता की ज्योत जागी रहे।

0: एचआईवी कभी न दूं।
1: अगर आप मां बनने वाली हैं, तो एचआईवी टेस्ट जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में सलाह और एचआईवी टेस्ट मुफ्त है और गोपनीय भी। बच्चे को एचआईवी से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है।
2: एक कदम जिंदगी की ओर।
3: जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी फरेबी चाल चलनी है चल लो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए तो उस समय हैरान मत होना, उस समय परेशान मत होना, उस समय घबराना मत, क्योंकि जो आपने किया है, अगर छल किया है, कपट किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो कई गुना होकर आपके पास जब लौटेगा उस समय आश्चर्य मत करना, क्योंकि कर्म की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा। कर्म के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। जय बिहारी जी के।

0: अरे भैया ये आप सबने हेलमेट क्यों पहना है? ये तो बाइक वाला हेलमेट है ना।
1: अब आप नहीं पहन रहे तो सोचा हम ही पहन लेते हैं।
2: असलियत में हेलमेट किसको शोभा देता है ये तो सबको पता है। बाइक चलाते वक्त सर बचाएं, हेलमेट पहने। वेयर अ हेलमेट ऑलवेज बिकॉज हेलमेट सेव्स।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: सुबह से मुंह फुला के घूम रही है ये।
6: मेरी बीवी को पता चल गया मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
5: किससे?
6: वो मुझे भी नहीं पता, वो बस इसे ही पता है, रात को सपने में देखा था ना।

नमस्कार दोस्तों, 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। 9:03 हो चुके हैं दोस्तों, और आप सभी ने अपने रेडियो सेट को ऑन कर लिया होगा, ये उम्मीद करते हैं। चलिए दोस्तों, आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है आप सभी के लिए बहुत ही खास कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला लेकर। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आज बहुत ही अच्छी से सुबह की शुरुआत आप सभी की हुई है, और अपनी सेहत का ध्यान भी बरसात के मौसम में आप सभी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे, अपना भी और अपनों का भी। 23 जुलाई 2026 आज का ये दिन बहुत ही प्यारा सा गुरुवार का, हर पल की नई शुरुआत। तो आज के दिन की भी एक नई शुरुआत के साथ नए पलों का वेलकम कीजिए, अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाइए। तो गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, 9 से लेकर 11 बजे तक आप सभी इंजॉय करेंगे इस बहुत ही प्यारे से सफर को, बहुत ही प्यारे से मनोरंजन से भरे सफर को। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम में मनोरंजन की, इस प्यारे से खूबसूरत से गीत के साथ।

दोस्तों मिस्टर बेचारा मूवी का ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा गीत उदित नारायण अलका याग्निक की आवाजों के साथ आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। जी दोस्तों कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला के साथ बहुत ही प्यारी सी ये शुरुआत आप सभी ने कर दी है और प्यारे प्यारे से पलों के प्यारे प्यारे से खूबसूरत से यादगार से पलों के। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों कार्यक्रम में आगे और अब आप सभी को लेकर चलते हैं मौसम की अपडेट की ओर।

दोस्तों इस समय धर्मशाला के तापमान की हम बात करें तो लगभग 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है आप सभी मौसम के तापमान को महसूस कर सकते हैं। और आंखों देखा हाल बताए दोस्तों, तो हल्की हल्की सी बूंदाबांदी जो है वो बारिश आप सभी इंजॉय भी कर रहे हैं बरसात के मौसम में। ये हल्की हल्की सी जो बूंदें होती हैं ये कई बार बहुत नुकसानदायक भी हो जाती हैं, इसमें बीमार रहने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और साथ ही बात करें दोस्तों लैंडस्लाइडिंग की, तो ऐसे मौसम में ज़्यादातर डर रहता है। ये जो हल्की हल्की सी बारिश लगती है या तेज़ बारिश भी होती है तब भी डर तो रहता ही है, क्योंकि पानी का बहाव एकदम से बढ़ जाता है और कब कहां बादल फटने की संभावना बन जाए कोई नहीं जानता। तो मौसम के अपडेट मौसम विभाग के अनुसार क्या है वो भी हम ज़रूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले फिर से लेकर चलेंगे आप सभी को एक और प्यारे से खूबसूरत से गीत की ओर।

दोस्तों, खुदगर्ज मूवी का ये बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने अपने रेडियो सेट से 91.2 मेगा हर्ट से। तो आइए दोस्तों, इसी गीत के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। और मौसम विभाग के अनुसार मौसम की क्या अपडेट है, क्या सतर्कता, क्या सावधानियां हमें किस तरह से बरतनी है वो जानते हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में मानसून की सक्रियता से जमकर बादल बरस रहे हैं। राजधानी शिमला सहित कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश का दौर बुधवार यानी कि बीते कल जारी रहा। 28 जुलाई तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और इस दौरान कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 23 जुलाई यानी कि आज की बात करें दोस्तों, तो किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर शेष सभी 10 जिलों ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 24 जुलाई को चंबा, कांगड़ा, सिरमौर में येलो अलर्ट रहेगा। और 25 जुलाई की हम बात करें तो शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना में येलो अलर्ट रहेगा। और उसी तरह से बाकी दिनों का भी ये शेड्यूल अलर्ट जो है वो रहेगा। तो दोस्तों, अलर्ट तो है ही, लेकिन हमें खुद को कैसे सेफ रखना है, कैसे सावधान रहना है हमें अपने आप को लेकर या अपनी फैमिली को लेकर। तो कई बार मनमानियाँ या फिर हमारी जिद हमें नुकसान में डाल देती है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, खासकर बरसात के मौसम में। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और खूबसूरत सा प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, मनोरंजन और ये बातचीत का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा, बस आप कहीं जाइएगा नहीं। 9:20 हो चुके हैं और अब समय है प्रादेशिक समाचारों का, क्योंकि अपने आसपास की कुछ खास जानकारियां सुबह सुबह बहुत जरूरी है जानना। तो आइए सुनते हैं समाचार, उसके बाद फिर से वापस आते हैं अपने इस प्यारे से खूबसूरत से कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में।
1: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से उनके साथ। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, रेडियो ने आजादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और प्रदेश के अधिकांश इलाकों में मानसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी। मौसम विभाग ने आज से 26 जुलाई तक कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरत के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। इस बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार करने और नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे सुधारों को लागू करने में तेजी लाने पर चर्चा हुई। तेजी से बदलते शासन के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए मोदी ने बदलते समय के अनुरूप शासन प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। जगत प्रकाश नड्डा ने आरोप लगाया कि कई राज्यों में जहां विपक्षी दलों की सरकारें हैं, इसमें हिमाचल भी शामिल है, वहां भी पेपर लीक की घटनाएं हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष चर्चा की अवधि तय करे और सभी पहलुओं पर खुलकर बात हो ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए सरकार का साथ दे। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से मुलाकात के बाद जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर संवाद करने के लिए तैयार है। उन्होंने सोनम वांगचुक से अपना अनशन तोड़ने का आग्रह किया।
2: गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
1: वही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ हुए व्यवहार पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी नीट अभ्यर्थियों के समर्थन में पहुंचे थे और यदि कोई स्थिति थी तो उसे बातचीत के माध्यम से भी सुलझाया जा सकता था। लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन एक महत्वपूर्ण अधिकार है और विपक्ष का दायित्व है कि वह जनता के मुद्दों को उठाए। सरकार ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और उनकी ओर से उठाए गए मुद्दों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ी है।
3: राहुल जी विपक्ष के नेता है, नीट के लोगों के समर्थन में आए, पेपर लीक हुआ उस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। और राहुल गांधी जी और विपक्ष के पूरे पार्टी के नेता है, तो जो भी राहुल गांधी जी मांग करके हमारी पार्टी, हमारे पार्टी के प्रमुख नेता है, उसके साथ हमारी पार्टी खड़ी है।
1: आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। रेडियो ने आजादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जनजागरूकता के क्षेत्र में आकाशवाणी ने लोगों तक सही और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाई है। आज भी ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के साथ सूचना शिक्षा मनोरंजन के क्षेत्र में आकाशवाणी की सेवाएं जारी है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला एक्स हैंडल @EIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। कांगड़ा जिले के 131 पौंग विस्थापित परिवारों के लिए लंबे इंतजार का दौर समाप्त हो गया है। करीब 5 दशकों से भूमि के मालकाना हक के लिए संघर्ष कर रहे पात्र परिवारों को अब अपनी जमीन के भू प्रमाण पत्र मिल चुके हैं। इसके साथ ही इन परिवारों के लिए स्थायी पुनर्वास और सम्मानजनक जीवन की नई राह खुल गई है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता।
4: कांगड़ा जिले के 131 पौंग विस्थापित परिवारों के लिए लंबे इंतजार का दौर समाप्त हो गया है। करीब 5 दशकों से भूमि के मालिकाना हक के लिए संघर्ष कर रहे अब अपनी जमीन के भू प्रमाण पत्र मिल चुके हैं। इसके साथ ही इन परिवारों के लिए स्थायी पुनर्वास और सम्मानजनक जीवन की नई राह खुल गई है। अब इन परिवारों के लिए हिमाचली बोनाफाइड, अन्य राजस्व दस्तावेज, बैंक ऋण, कृषि सब्सिडी और सरकारी योजनाओं का लाभ लेना आसान होगा। पात्र परिवार को पक्का घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का भी प्रावधान किया गया है। पौंग विस्थापित परिवारों का मानना है कि वर्षों के संघर्ष के बाद मिला ये अधिकार भविष्य की नई शुरुआत है। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 26 जुलाई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी व दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में आज भी मॉनसून की वर्षा का दौर रुक रुक कर जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आज से 26 जुलाई तक कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज कुल्लू, शिमला और मंडी जिलों के कुछ इलाकों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि 28 जुलाई तक पूरे प्रदेश में बीच बीच में बारिश होती रहेगी। उन्होंने लोगों को नदी नालों के पास न जाने की सलाह दी है।
5: 28 से लेके 28 जुलाई तक संभावना है कि पूरे प्रदेश में ही जो ये मौसम सक्रिय रहेगा और बहुत से क्षेत्रों में बीच बीच में मतलब बारिश का दौर देखने को मिलेगा। हालांकि इसमें अगर अलर्ट्स की बात करें तो केवल येलो कैटेगरी में हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया गया है। उसमें अगर 23 जुलाई की बात करें तो जो हर क्षेत्र में

0: हमीरपुर है और शिमला मंडी है, कहाँ यहाँ पे एक दो स्थानों में ही हैवी रेनफॉल हो सकता था।
1: अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। हिमाचल में खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान शुरू शीर्षक से पंजाब केसरी ने लिखा है, मुख्यमंत्री सुक्खू ने की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता। दैनिक जागरण लिखा है, चिट्टे की मांग को भी खत्म करेगी सरकार। आउटसोर्स कर्मी की नौकरी पक्की नहीं, हिमाचल हाईकोर्ट ने किया साफ, ठेकेदार बदलने पर छोड़नी ही पड़ेगी सेवाएं, दिव्य हिमाचल की खबर है। हिमाचल दस्तक ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखा है, दिल्ली के हिमाचल निकेतन में छात्रों को मिलेगी आवासीय सुविधा। स्वच्छ और हरित विद्यालय रेटिंग में प्रदेश के 11 स्कूलों को राष्ट्रीय सम्मान, हर स्कूल को 1-1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी, दैनिक भास्कर की एक खबर है। मौसम से जुड़ी खबर को अमर उजाला ने शीर्षक दिया है, गड़गून और भंगार गांव जमींदोज, सपेड़ा में खतरा बरकरार, खाली कराए तीनों गांव। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजी से बदलते समय के अनुरूप शासन के स्वरूप को आधुनिक बनाने की आवश्यकता पर दिया बल। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से उनके साथ। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, रेडियो

दोस्तों समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रचिका के साथ। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। दोस्तों जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है और हर मुश्किल पलों में हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, हर मुश्किल को टाल देना, इसे कहते हैं एक जाबाज जिंदगी का खिलाड़ी। और ये हमारी आज की जेन जी ने प्रूव कर दिया है, जो कि इतनी मुश्किलों के बाद भी इतनी प्यारी प्यारी सी रील्स जो है वो हंसते मुस्कुराते हुए दुनिया के बीच पहुंचा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हम हर दर्द सहने को तैयार हैं, लेकिन अपने सवालों के जवाब हम जरूर पाकर रहेंगे, चाहे किसी भी दर्द से गुजरना क्यों ना पड़े। तो हर मुश्किल का डटकर सामना कर रहे हैं और हर मुश्किल के सामने खड़े हैं आज के युवा, आज के जैन जी। तो हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, जहां कोई भेदभाव नहीं, कोई धर्म, कोई जात, कोई भेदभाव नहीं है, सिर्फ इंसानियत को नज़र में रखा जा रहा है। सिर्फ इंसान होने के नाते एक दूसरे को सहारा, एक दूसरे का साथ वो सभी दे रहे हैं। तो दोस्तों है ना कितनी खूबसूरत सी बात, अपने देश पे हमें गर्व होना चाहिए, देश के युवाओं पे हमें गर्व होना चाहिए। तो ये इसी खूबसूरत सी बात के साथ दोस्तों आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर। हम सब चोर हैं मूवी का गीत दोस्तों कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों के साथ आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर पहुंचने जा रहा है।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए इसी गीत के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और बातचीत के साथ साथ जानकारियाँ बेहद जरूरी हैं। तो दोस्तों जानकारियाँ हमारे आसपास हमारी जिंदगी से जुड़ी कुछ खास जो कि हमें बहुत ज़्यादा शौक होता है ज्वेलरीज का। और तो आपको एक और एक छोटा सा झटका लगने वाला है क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि सोने चांदी की कीमतों में जो है बुधवार को फिर से उछाल रहा। वैसे तो बहुत महंगे हो ही चुके हैं लेकिन और ज़्यादा महंगे हो गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो चांदी 3,034 रुपये बढ़कर जो है लगभग 2 लाख के पार पहुँच चुका है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,303 यानी कि 2,303 रुपये चढ़कर लगभग 1.5 लाख तक पहुंचने वाला है। अभी थोड़ा सा दूर है लेकिन लगता है कि शायद। तो 203 दिन में सोना 4,281 रुपये और 10,764 रुपये चांदी जो है वो महंगी हो चुकी है। इस साल सोने चांदी की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और ऐसे में हमें भी थोड़ा सा सावधान रहना बेहद ज़रूरी है। जो शौक जो इंटरेस्ट है थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि इससे हमारी डेली लाइफ पे फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये अपडेट है आप सभी के लिए, बहुत ही खास जानकारी है। तो आइए इसी के साथ इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों द रियल लव स्टोरी मूवी फिल्म जो है आपका सरूर से, ये बहुत ही प्यारा सा गीत हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल की आवाजों के साथ आप सभी ने एंजॉय किया। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और बहुत ही प्यारा सा ये कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी डेली रूटीन के साथ। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आके, और आप सभी जानते हैं कार्यक्रम में कुछ खास बातें जो हमारी जिंदगी से जुड़ी रहती है, हमारी डेली रूटीन से जुड़ी रहती है। तो हर दिन कार्यक्रम में कुछ खास रहता है, आज के कार्यक्रम में ऐसी कौन सी खास बातचीत रहने वाली है जो कि आज का एक बहुत बड़ा इशू भी है और हर किसी की प्रॉब्लम भी बन चुकी है, कहीं ना कहीं एक बीमारी भी कह सकते हैं। जी दोस्तों, जो नशीले पदार्थों की हम बात कर रहे हैं, जो नशा एक आग की तरह बढ़ता जा रहा है समाज में, समाज के बच्चों में, देश के बच्चों में, तो नशा मुक्त भारत अभियान की हम थोड़ा सा बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर किस उद्देश्य से इसको शुरू किया गया और क्या इसमें बातें हैं जो कि हमें समझना या फिर जानना बेहद जरूरी है। तो जरूर बातचीत करेंगे, जरूर जानेंगे, लेकिन आइए उससे पहले एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर 91.2 MHz से।

200 बर्दाश्त फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत शान और अलका याग्निक की आवाजों के साथ, मीठे से स्वरों के साथ आप सभी के कानों तक पहुंचाए गए हैं आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से। जी दोस्तों, तो जिंदगी में भी इसी तरह से होता है कि बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, कहते हैं ना लिमिट होती है हर चीज़ की। खैर, आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जो नशा मुक्त भारत अभियान चलाया गया था तो किस उद्देश्य से, उसके पीछे उद्देश्य क्या था, क्यों चलाया गया था। तो दोस्तों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त 2020 को शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन, नशे की लत को रोकना, जन जागरूकता फैलाना और पीड़ितों के लिए पुनर्वास केंद्र स्थापित करना। जी दोस्तों, सबसे पहला उद्देश्य यही है, अवेयरनेस, लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसके प्रति जो है वो जागरूक किया जा सके, शिक्षण संस्थानों, महिलाओं के समूहों और युवाओं के माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जमीनी स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार करना, जिससे जब हमें जानकारी होती है, जब हमें अवेयरनेस होती है, तो हम गलत रास्तों पे जाने से पहले 100 बार सोचते हैं। जिस तरह इस समय देश का माहौल बना हुआ है, तो हर कोई अपनी अपनी सोच समझ के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ रहा है और उन युवाओं का साथ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है किसी के बहकावे में या किसी दबाव में, जो युवाओं को सही लग रहा है, यहाँ तक कि पेरेंट्स को, बुजुर्गों को, बड़ों, मतलब जो भी सेलिब्रिटीज हैं, जो भी हैं, तो हर कोई जिसको जो सही लग रहा है बस वो उसी का साथ दे रहे हैं और उसी के लिए आवाज उठा रहे हैं निस्वार्थ भाव से। तो यहाँ कोई भी, यहाँ पे मतलब कि किसी एक चीज को मेंशन करके हम उनका वो नहीं कर सकते हैं। तो यही प्रेरणादायक बातें होती हैं, अवेयरनेस हमारे लिए जिंदगी में सबसे खास और सबसे जरूरी रहती है। जब तक अवेयरनेस नहीं है तब तक हम कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ, बहुत ही खास बातचीत के साथ और प्यारे प्यारे से गीत संगीत के साथ। तो आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों नशा मुक्त भारत अभियान पे। तो सबसे पहले नजर नशे पे डाले जाए, यानी कि नशीले पदार्थों की हम बात करें तो किस तरह से जो है ये हमारे शरीर को खोखला कर देते हैं, किस तरह से ये हमारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं, किस तरह से ये हमारी मतलब कि एनर्जी को खत्म करते हैं, ये जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता है। और इसीलिए जागरूकता, अवेयरनेस जिसे नाम दिया गया है, तो सोच समझ कर दिया गया है। तो किसी, चाहे वो नशे की बात है, चाहे हमारी ज़िंदगी से जुड़ी कोई भी बात है दोस्तों, अवेयरनेस होना हर इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है। दूसरों की सुनी सुनाई बातों पे यकीन करना या दूसरों की बातों पे चलना, ये हमारी अपनी अवेयरनेस नहीं होती है। हमारी अवेयरनेस हम खुद कितना रिसर्च कर रहे हैं, हम खुद कितना उस चीज़ पे जान रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तब हम उसके बेनिफिट हों या फिर लॉसेस हों वो तभी हम जान पाएंगे। क्योंकि लोग कहेंगे कि हो सकता है, कुछ लोग आपको कहेंगे कि इसके अच्छे जो है मतलब फ़ायदे हैं आपके लिए, आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, आपको ये होगा, आपको वो होगा, आप स्ट्रेस फ्री करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप खुद इस चीज़ के तह तक जाएंगे तो आप इसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलुओं को जब जानेंगे तभी आप इन बातों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो बच्चे हों, चाहे पेरेंट्स हों, चाहे बुजुर्ग हों, हर एक इंसान तक ये जानकारी पहुंचाना, हर इंसान को इस बारे में अवेयर करना बेहद ज़रूरी है। तो फिलहाल आइए दोस्तों, इन्हीं कुछ खास बातों के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये क्या प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

कि दोस्तों बरसात का मौसम है और इंजॉय करना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी अगर ऐसे डेली रूटीन के साथ हम जीते रहेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ बोरिंग सा फील होता है और ऐसा लगता ही नहीं कि हम ज़िंदगी जी भी रहे हैं असल में, क्योंकि वो तो ऐसे नॉर्मल बस सुबह जाओ शाम को वापस आओ, बस इसी तरह से चलता रहता है। लेकिन बीच में थोड़ा सा ब्रेक, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होना बेहद ज़रूरी है, थोड़ा सा ब्रेक लेना खुद के लिए। ये नहीं कि पूरी ईमानदारी, मानते हैं आप में ईमानदारी है, लेकिन इतना भी ईमानदार मत बनिए कि बाद में उसी ईमानदारी का फल आपको पछतावे के साथ मिले। खैर दोस्तों, ये ज़िंदगी से जुड़ी कुछ छोटी छोटी सी बातें, लेकिन आई एस सी के साथ फिर से हम बात करेंगे एक जानकारी की। लेकिन उससे पहले एंजॉय करेंगे कार्यक्रम का एक और प्यारा सा गीत, उसके बाद आएंगे वापस एक बहुत ही खास जानकारी के साथ।

दोस्तों आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और रुख करते हैं जानकारियों की ओर। तो जानते हैं एक बहुत ही खास जानकारी। दोस्तों अगर आप भी आसमान से परे सितारों और ग्रहों की दुनिया को करीब से समझना चाहते हैं और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों के साथ काम करने का सपना देखते हैं तो आपके लिए ये बेहद खास और शानदार जानकारी है। जी दोस्तों, इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने विद्यार्थियों के लिए इसरो इंटर्नशिप 2026 का शानदार अवसर प्रदान किया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवा छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और आधुनिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अनुभव प्रदान करना है। इसके लिए 14 अगस्त 2026 सुबह 10 बजे से 14 सितंबर रात 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। इसरो इंटर्नशिप के लिए केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन करने के पात्र हैं। इसमें भाग लेने के लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से वीई, वीटेक, एमई, एमटेक, वीएससी या एमएससी फिजिक्स केमिस्ट्री अथवा पीएचडी का नियमित ऑन कैंपस छात्र होना अनिवार्य है। जी दोस्तों, तो ये बहुत ही खास जानकारी आप सभी तक पहुँचाई गई है रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से। तो अगर आप भी इच्छुक हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आप ये पात्रता आप में है, मतलब कि आप इस पात्र हैं जो भी ये इन्होंने पात्रता बताई है, बीटेक, बीई, एमई, एमटेक, बीएससी या एमएससी फिजिक्स केमिस्ट्री, तो आप इसके लिए मतलब कि आवेदन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, आपके बरस मूवी का ये बेहद प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। कार्यक्रम में समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं नशा मुक्त भारत अभियान की, यानी कि नशे की जो ये आग फैलती जा रही है, तो इसी को देखते हुए जो ये नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य सबसे पहला जागरूकता, अवेयरनेस, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर किया जा सके, उन तक हर एक बात पहुंचाई जा सके, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, बच्चों को किस तरह से ऑब्जर्व करना है, किस तरह से ध्यान रखना है, हर एक बात को किस तरह से हमें हैंडल करना है, तो ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को भी पता होना बेहद ज़रूरी है और साथ ही बच्चों को भी। उसके बाद दूसरा उद्देश्य आता है दोस्तों, रिहैब और ट्रीटमेंट, जो कि अक्सर पेरेंट्स अपनी जो है इमेज बचाने के लिए, सोसाइटी में इमेज को बनाए रखने के लिए, बच्चों की उस बीमारी को जो है ट्रीटमेंट तक नहीं ला पाते हैं। वो सब कुछ जानकर भी अनजान बन जाते हैं, या यूं कहें कि आंखें बंद कर लेते हैं, हर एक बात को नज़रअंदाज करते हैं, गलतियों पे पर्दा डालते हैं, जबकि उन्हें पता है कि हर जगह जो है, क्योंकि जागरूक किया जा रहा है, अवेयरनेस हमारा सबसे पहला उद्देश्य, तो पेरेंट्स तक भी ये बात, हर एक बात पहुंचाई गई है, चाहे वो किसी भाषण के माध्यम से पहुंचाई गई, क्योंकि स्कूल्स में भी ये चीज़ अब प्रोवाइड की जा रही है, और महिला, चाहे वो गांव हो, चाहे वो किसी भी तरह से प्रधान उप प्रधान सेक्रेटरी लेवल, मतलब हर एक लेवल तक जो है वो ये सेमिनार होते हैं, ट्रेनिंग्स दी जाती हैं कि किस तरह से हमें हर एक चीज़ को देखना है, मैनेज करना है। तो पेरेंट्स को भी अपने बच्चों पे किस तरह से ध्यान रखना है, कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें नज़र आते हैं, तो हमें उस पे सवाल उठाना चाहिए या उन पे ध्यान देना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन पेरेंट्स को वही बात कि एक तो विश्वास नहीं करना, क्योंकि दूसरों की कई बातों पे विश्वास अक्सर नहीं किया जाता है, जब समय हाथों से निकल जाता है तब समझ में आती हैं चीज़ें, लेकिन तब फ़ायदा कोई नहीं रहता है। खैर, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है हर किसी की, क्योंकि अपने लेवल पे हर कोई जो है वो ज्ञानवान है, नॉलेज है हर किसी को, सब जानते हैं, ज़रूरत नहीं है किसी से जानने की। खैर, लेकिन फिर भी कहते हैं ना दोस्तों कि जब आंखों पे पट्टी बंध जाती है तो कुछ नज़र नहीं आता, तो ज़रूर इस पे भी हम बात करते हैं और भी जानेंगे दोस्तों कि किस तरह से जो है हम बच्चों को या युवाओं को या जो भी, क्योंकि बुज़ुर्ग भी जब एज ज़्यादा हो जाती है तब भी ये चीज़ें हमें सामने नज़र आती ही हैं, चाहे वो कोई भी नशीले पदार्थ हैं, कहीं ना कहीं जो हमारी डेली की लाइफ रूटीन है उसको इफ़ेक्ट करती हैं, तो किस तरह से हमें इस पर रिएक्शन लेना चाहिए, किस तरह से इस पर काम करना चाहिए, हम इस पर ज़रूर बात करेंगे। लेकिन आइए इंजॉय करते हैं उससे पहले कार्यक्रम का एक और खूबसूरत सा प्यारा सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर।

खूबसूरत बना रहे हैं। जी दोस्तों, और आज हम बात कर रहे हैं नशे के। तो आज देश के कोने कोने में इस अभियान को जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। हर एक नागरिक जागरूक है और इसमें बढ़ चढ़ कर अपना योगदान जो है वो दे रहे हैं। तो दोस्तों, जो हमने बात की रिहैब और ट्रीटमेंट की, तो अक्सर जो वो स्टिग्मा हम सभी के दिमाग में, जो हमारी मानसिक सोच, कई बार हम उसी सोच के चलते नशे की बीमारी से लड़ते एक व्यक्ति को एक सही जगह नहीं पहुंचा पाते, यही सोचकर कि अगर समाज को पता चल गया, ये बात बाहर आ गई तो क्या होगा, हमारी क्या इमेज रह जाएगी सभी लोगों के बीच में। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि समय रहते अगर बच्चे या युवाओं को वो ट्रीटमेंट हम दिला दें तो शायद सिचुएशन को संभाला जा सकता है, उनकी जिंदगी को बचाया जा सकता है। अवेयरनेस से हम उन्हें उससे उस तक पहुंचने से पहले ही रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाँ, बात अगर रिहैब या ट्रीटमेंट तक पहुंच जाए तो उसमें भी हमें देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समाज के बारे में सोचेंगे तो समाज का काम है कहना, वो आपके ना अच्छाई में साथ देंगे ना बुराई में साथ देंगे, बस दो पल की बातें करके वो पीठ मुड़ते ही आपके बारे में बुराई करना शुरू कर देंगे, अगर अच्छाई में वो साथ देते भी हैं। तो दोस्तों, जब ये चीज़ आप फेस करते हैं, माना कि आपके ही कोई नॉन या आपके फैमिली मेम्बर में से आपके घर के कोई भी सदस्य इस नशे की बीमारी से जूझ रहे हैं, तब समाज के वो चार लोग वहाँ नहीं आते हैं उन्हें संभालने के लिए, उनके साथ उस सिचुएशन को फेस करने के लिए। उस समय आप फेस कर रहे होते हैं, आप चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो उन समाज के चार लोगों की हम इतना क्यों सोचते हैं जिससे कि घर एक बर्बादी की ओर जाए, घर उजड़ने की ओर जाए, तो हम उस चीज़ का इंतज़ार क्यों करते हैं। तो ज़रूर दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके नॉन में, आपके जानने वालों में अगर रिहैब या ट्रीटमेंट की फैसिलिटी सरकार द्वारा भी दी गई हैं और प्राइवेट भी बहुत सारी हैं, लेकिन आप कहीं भी उन्हें एक अच्छी जगह पे जो है वो वहाँ ट्रीटमेंट दिला सकते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर में एडमिट करा सकते हैं, जिससे कि वो प्रेरणादायक बातें सीख सकें, अपनी ज़िंदगी को एक सही ट्रैक पर लेकर जा सकें। जी दोस्तों, तो ये कुछ खास बातें आई, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का एक और खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर, आप सभी की अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका की तरफ से।

तो बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने अपने रेडियो सेट से 91.2 MHz पर। इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए दोस्तों, इसी प्यारे से गीत के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम का जानकारियों की ओर। दोस्तों, प्रदेश में मानसून 2026 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान का पल पल का रिकॉर्ड ऑनलाइन रखा जाएगा। राज्य सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि आपदा से संबंधित हर प्रकार के नुकसान की जानकारी समय पर हिमाचल प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम HPDMIS पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में मुख्य सचिव के निर्देशों के बाद जिला कांगड़ा प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। जी दोस्तों, मानसून 2026 के दौरान सड़कों, पुलों, पेयजल योजनाओं, बिजली व्यवस्था, कृषि बागवानी, सरकारी भवनों तथा अन्य सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों को हुए नुकसान का पूरा और सत्यापित ब्यौरा समय पर पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। जी दोस्तों, आप सभी जानते हैं बरसात का मौसम है और इस मौसम में बहुत से नुकसान जो हैं हमें देखने को मिलते हैं, जो कहीं नदी नालों के साथ घर बनाए होते हैं तो उन्हें भी नुकसान पहुंचता है, पहाड़ियों पे घर बनाए होते हैं तो उन्हें भी नुकसान पहुंचता है। तो जब पानी का बहाव बढ़ जाता है, क्योंकि नदी नाले अक्सर लोगों ने बंद कर दिए हैं, वहाँ घर बना दिए हैं या पता नहीं किस किस तरह से, या तो सफाई ही नहीं की है। पहले समय समय से सफाइयाँ की जाती थी, लेकिन अब ना सड़कों की सफाइयाँ कर रहे हैं लोग, ना ही तो मतलब अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं उससे मुंह मोड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। उसी के चलते भी ये भारी नुकसान जो है वो हमें झेलने पड़ते हैं, क्योंकि नदी नालों का पानी नदियों में नहीं बहेगा तो वो सड़कों पर ही बहेगा, घरों तक पहुँचेगा और घरों को बहाएगा। तो ये समझ, ये अवेयरनेस, ये जागरूकता हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। तो तभी समय से पहले, यानी कि बरसात के मौसम से पहले ये सफाई हमें ज़रूर कर लेनी चाहिए। हमें प्रशासन के सहारे पे ही नहीं बैठना चाहिए, हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारे भी कुछ दायित्व हैं। तो इसी खास जानकारी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से।

तो बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया है अपने अपने रेडियो सेट से 91.2 MHz से। तो आई दोस्तों इसी प्यारे से गीत के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और हम बात कर रहे हैं नशे की। जी दोस्तों, किस तरह से इस पे अपनी अवेयरनेस को बढ़ाया जा सकता है, किस तरह पे इस पे काम किया जा सकता है, ये अभियान जिस उद्देश्य से चलाया गया है उस उद्देश्य को पूरा किया जा सके। तो जब तक हम अपनी मानसिक सोच को नहीं बदलेंगे, जब तक हम इस सोच में बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक इस चीज को एक तरह से खत्म कर पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि जो सप्लाई है अगर वो बंद हो जाए तो शायद इसका कुछ किया जा सकता है। सप्लायर पे भी बहुत ज़्यादा काम किया जाता है, उन्हें भी इस चीज़ के लिए रोका जाता है, उनसे बात की जाती है। लेकिन दोस्तों मेन बात तो ये है कि जो डिमांड है, जो मतलब कि जिन्हें ये बीमारी लग चुकी है, अभी पीछे जैसे एक केस भी आया था कि एक युवा ही थे शायद, तो उन्होंने नशीले पदार्थों के लिए जो है अपनी जान दे दी ना मिलने की वजह से। तो देखिए दोस्तों, ये बीमारी इस हद तक बढ़ जाती है कि जब हमें ये प्रोवाइड नहीं हो पाती है तो हम जो है एक चिड़चिड़ापन जो है, बच्चे हों चाहे युवा हों, उनमें वो आना शुरू हो जाता है। वो मारपीट करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को हर्ट करना शुरू करते हैं, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन ये चीज़, ये बीमारी उनसे ये चीज़ें करवाना शुरू करती है। क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों कि जब किसी चीज़ की एक लत लग जाती है तो वो जब तक ना मिले तब तक फिर हम अपने वश में ही नहीं रहते, इस तरह से कुछ चीज़ें सामने आती हैं। तो वहाँ ज़रूरत होती है प्यार की, फैमिली सपोर्ट की, सोसाइटी सपोर्ट की। तो जब एक इंसान अगर इस बीमारी से जूझ रहा है, इस बीमारी को फेस कर रहा है, तो जो समाज उन्हें एक नशेड़ी के नज़रिए से देखती है ना, उन्हें एक टैग दे देती है, तो वो अपने आप को और ज़्यादा कमज़ोर महसूस करते हैं, और ज़्यादा टूटा हुआ महसूस करते हैं कि हमें टैग मिल ही गया है तो अब हम इस दुनिया में जीकर क्या करें। उनकी हिम्मत टूट जाती है। कहीं ना कहीं वो कोशिश ज़रूर करते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन फिर भी सोसाइटी ही उन्हें उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ाती है। तो ज़रूरत है हमें अपने आप को बदलने की, हमें अपनी सोच को बदलने की। हम दूसरों को नहीं कह सकते, लेकिन हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, अपनी इस मानसिक सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और इन्जॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों इस प्यारे से गीत के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अपनी बातचीत का रुख फिर से लेकर चलते हैं जानकारियों की ओर और जानते हैं एक बेहद खास और जरूरी जानकारी। दोस्तों प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता स्वर्गीय जीएस बाली की जयंती के उपलक्ष्य में चतुर्थ विशाल रोजगार मेले का आयोजन 25 व 26 जुलाई 2026 को गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नगरोटा बगवा में किया जा रहा है। ये शब्द नगरोटा बगवा के विधायक एवं बाल मेला समिति के संरक्षक आरएस बाली ने बुधवार को ओबीसी भवन में आयोजित कार्यकर्ताओं की बैठक में कहे। जी दोस्तों उन्होंने बताया कि रोजगार मेले में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी 25 और 26 जुलाई को अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बायोडाटा, आधार कार्ड व अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नगरोटा बगवा पहुंचकर विभिन्न कंपनियों के साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। जिला रोजगार अधिकारी अक्षय कुमार और कोऑर्डिनेटर अमित सूद ने बताया कि इस मेले में अभी तक 27 कंपनियां युवाओं के चयन के लिए पंजीकरण करवा चुकी हैं, जो 3500 युवाओं का चयन करेंगी। युवाओं को 14,000 से 50,000 तक का वेतन दिया जाएगा। साक्षात्कार में 10वीं, 12वीं, बीए, आईटीआई, डिप्लोमा और डिग्री किए युवा भाग ले सकते हैं। जी दोस्तों तो बहुत ही खास जानकारी, 25 और 26 जुलाई को ये रोजगार मेला जो है वो डिग्री कॉलेज नगरोटा बगवा में किया जा रहा है, तो जरूर आप वहां भाग ले सकते हैं। जो फ्री है, जो जहाँ जो काम ढूंढ रहे हैं और नहीं मिल पा रहा है तो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं जो बच्चे, जो युवा, तो वो इस रोजगार मेले में भाग ले सकते हैं और पात्र बन सकते हैं। तो आइए दोस्तों इसी खास जानकारी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और खूबसूरत सा गीत।

तो फिर से गीत के साथ अब समय हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का। तो आप सभी इंजॉय कर रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आज का ये बहुत ही प्यारा सा सफर आप सभी ने इंजॉय किया अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की, फिर होगी मुलाकात एक नई बातचीत नई जानकारियों के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सचिन है।
2: पांच YouTube वीडियो को लाइक करके पांच लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो ₹500 अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा
2: है? हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
2: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे ₹500 मिल गए, इट मीन्स ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
2: ₹20,000 में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं। क्या बात है यार।
3: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
2: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
3: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। कोई भी अजनबी अगर आपको ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करने के लिए कहें तो उसे बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना पूरी जानकारी के कोई भी वित्तीय लेन देन ना करें और उनकी लालच भरी बातों में तो बिल्कुल ना फंसें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
4: अब उठो, देश के भाग जगाने हैं आपको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं आपको। अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है। अब ठान के मुद्दे स्वच्छता की ज्योत जागी रहे, स्वच्छता की ज्योत जागी रहे।

0: पर एचआईवी कभी न दूं।
1: अगर आप मां बनने वाली हैं, तो एचआईवी टेस्ट जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में सलाह और एचआईवी टेस्ट मुफ्त है और गोपनीय भी। बच्चे को एचआईवी से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है।
2: एक कदम जिंदगी की ओर।
3: जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी फरेबी चाल चलनी है चल लो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए तो उस समय हैरान मत होना, उस समय परेशान मत होना, उस समय घबराना मत, क्योंकि जो आपने किया है, अगर छल किया है, कपट किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो कई गुना होकर आपके पास जब लौटेगा उस समय आश्चर्य मत करना, क्योंकि कर्म की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा। कर्म के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। जय बिहार।

0: अरे भैया ये आप सबने हेलमेट क्यों पहना है? ये तो बाइक वाला हेलमेट है ना।
1: अब आप नहीं पहन रहे तो सोचा हम ही पहन लेते हैं।
2: असलियत में हेलमेट किसको शोभा देता है ये तो सबको पता है। बाइक चलाते वक्त सर बचाएं, हेलमेट पहने। वेयर अ हेलमेट ऑलवेज बिकॉज हेलमेट सेव्स।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्यों सुबह से मुंह फुला के घूम रही है ये?
6: मेरी बीवी को पता चल गया मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
5: किससे?
6: वो मुझे भी नहीं पता, वो बस इसे ही पता है, रात को सपने में देखा था ना।

सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारी से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।
1: My name is Anthony Gonsalves.
2: Right. My name is Anthony Gonsalves.

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
1: हर घर

0: गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सचू ने
2: 5 यूट्यूब वीडियो को लाइक करके 5 लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
2: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
2: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इतने से ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
2: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं। क्या बात है यार।
3: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
2: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
3: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। कोई भी अजनबी अगर आपको ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करने के लिए कहें तो उसे बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें।

0: लेन ना करें और उनकी लालच भरी बातों में तो बिल्कुल ना फंसें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
1: अब उठो, देश के भाग जगाने हैं आपको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं आपको। अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है, अब ठान के मुद्दे स्वच्छता की ज्योत जागी रहे, स्वच्छता की ज्योत जागी रहे।

0: पर एचआईवी कभी न दूं।
1: अगर आप मां बनने वाली हैं, तो एचआईवी टेस्ट जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में सलाह और एचआईवी टेस्ट मुफ्त है और गोपनीय भी। बच्चे को एचआईवी से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है।
2: एक कदम जिंदगी की ओर।
3: जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी फरेबी चाल चलनी है चल लो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए तो उस समय हैरान मत होना, उस समय परेशान मत होना, उस समय घबराना मत, क्योंकि जो आपने किया है अगर छल किया है, कपट किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो कई गुना होकर आपके पास जब लौटेगा उस समय आश्चर्य मत करना, क्योंकि कर्म की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा, कर्म के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता।

0: भैया, ये आप सबने हेलमेट क्यों पहना है? ये तो बाइक वाला हेलमेट है ना।
1: अब आप नहीं पहन रहे तो सोचा हम ही पहन लेते हैं।
2: असलियत में हेलमेट किसको शोभा देता है ये तो सबको पता है। बाइक चलाते वक्त सर बचाएं, हेलमेट पहने। वेयर अ हेलमेट ऑलवेज बिकॉज हेलमेट सेव्स।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: सुबह से मुंह फुला के घूम रही है ये।
6: मेरी बीवी को पता चल गया मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
5: किससे?
6: वो मुझे भी नहीं पता, वो बस इसे ही पता है, रात को सपने में देखा था ना।

नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और अब समय है दोस्तों कार्यक्रम हमारी सेहत का। तो दोस्तों ये कार्यक्रम हमारी सहयोगी संस्था ऑर्गन इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जीवन एक अनमोल उपहार। ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से 91.2 मेगाहर्ट्ज पर।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियाँ लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज के कार्यक्रम में ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा हमारे साथ हैं और आज हम एक बार फिर से एक और प्रेरणा से भरी हुई कहानी लेकर आए हैं और वो हमें बहुत ही खास मेहमान से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए डॉक्टर शर्मा से बात करते हैं।
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ और मैं ऑर्गन इंडिया की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम में, जो कि अंग दान देह दान के लिए समर्पित है और इसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। दोस्तों, जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है कि जीवन एक अनमोल उपहार है। अनमोल मतलब इसका हम मूल नहीं लगा सकते। आप अन्न दान कर सकते हो, आप धन दान कर सकते हो, लेकिन जो अंग दान है वो इतना महान है कि आप सीधा सीधा किसी की जिंदगी बचा रहे हो और उस जिंदगी को बचने के बाद वो इंसान क्या कुछ कर सकता है अपनी लाइफ में। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये अंग दान जो है वो सबसे बड़ा दान कहलाता है। इसी सीरीज में आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक किडनी डोनर हैं। इन्होंने 1993 में अपने भाई की जान बचाने के लिए अपनी एक किडनी डोनेट कर दी थी। इंदौर के रहने वाले हैं, तो चलिए आज इनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 1993 में जब इतने कम अंग प्रत्यारोपण हमारे देश में हो रहे थे और अंग दान जैसी चीज तो बहुत बड़ी थी, मतलब नामो निशान नहीं था इसका, तो उस समय पर भी इन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया और अपने भाई की जान बचाई, तो अब जाके ये कैसा फील करते हैं, सब चीजें जानेंगे हम। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। विवेक जी, जैसा कि मैंने श्रोताओं को अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आपने अपने भाई को किडनी डोनेट कर दी थी, तो थोड़ा सा आप इस बैकग्राउंड के बारे में बताइए। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं और कहाँ के रहने वाले हैं, एंड फिर आप ये बताइए हमारे श्रोताओं को कि आपके जो भाई थे जिन्हें आपने किडनी डोनेट करी और जिनको किडनी की जरूरत थी, वो उनकी प्रॉब्लम्स कहाँ से स्टार्ट हुई सब और किडनी ट्रांसप्लांट तक कैसे बात पहुंच गई।
3: एक्चुअली मैं अभी रायपुर में रहता हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ में रहता हूँ
2: जी। और किडनी ट्रांसप्लांट तक कैसे बात पहुँच गई।
3: एक्चुअली मैं अभी रायपुर में रहता हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ में रहता हूँ
2: जी।
3: और यहाँ पे एक कंपनी में एज ए कंसल्टेंट सर्विस कर रहा हूँ। जब मैंने किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत, मेरे ब्रदर को कुछ तबियत खराब थी और उसके बाद उनको कुछ इन्फेक्शन हुआ जिसके कारण उनकी किडनी फेल हो गई और डॉक्टर ने बोला कि किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। उस समय हम लोग छत्तीसगढ़ में ही रहते थे, राजनांदगांव में रहते थे और यहाँ आसपास पूरे सेंट्रल इंडिया में किडनी ट्रांसप्लांट किडनी से रिलेटेड किसी भी इलाज किडनी से
2: सुविधा उपलब्ध नहीं थी।
3: हाँ, डायलिसिस वगैरह कोई भी चीजें उस समय उपलब्ध नहीं थी सेंट्रल इंडिया में, सिर्फ तुलसीराम हॉस्पिटल इंदौर में ही ये सुविधा उपलब्ध थी। और मेरे फादर डेप्टी कलेक्टर थे उस समय, एमपी छत्तीसगढ़ एक ही था, तो मेरे पिताजी ने अपना ट्रांसफर मेडिकल ग्राउंड पे इंदौर करवाया और इंदौर में फिर किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। मेरे ब्रदर का दो बारी किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है। अच्छा। एक बारी मेरे जी
2: मतलब आपने जिस समय किडनी दी थी वो सेकंड ट्रांसप्लांट था उनका।
3: जी जी, उस समय उनका सेकंड ट्रांसप्लांट था जो कि 93 में हुआ था, उससे पहले 89 में फर्स्ट ट्रांसप्लांट हुआ था।
2: ओके, चार साल पहले करीब एक और ट्रांसप्लांट होता, तब किसने किडनी डोनेट करी थी अपनी?
3: तब मेरे फादर ने किडनी डोनेट करी थी।
2: ओके ओके, ठीक है
3: जी जी।
2: तो जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि हमने अपने पहले के शोज में भी बताया है कि जो इंडिया में जो कानून है वो 1994 में पहली बार आया था इस किडनी ट्रांसप्लांट को या अंग प्रत्यारोपण को लेकर जो कानून बनाया गया था, जिसमें ब्रेन डेथ के बारे में भी बताया गया था, वो 1994 में आया था। मतलब उससे पहले कोई कानून ही नहीं था हमारे देश में ट्रांसप्लांट की सर्जरीज को और अंगदान की सुविधा को लेकर। तो सर आप ये बताइए कि उस टाइम पर जब इतना अवेयरनेस ही नहीं थी। आज के जमाने में तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो गई है पहले के कंपैरिजन में, बट उस टाइम पे तो इन चीजों का नामो निशान भी नहीं था, कानून ही नहीं था। तो उस टाइम पर चीजें कैसी थी, मतलब कैसे, आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। फादर के टाइम पे तो बहुत ही पुराना है, बट आप अपने टाइम की चीजें बताएं कि उस टाइम पर क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको। मतलब मैं अपनी समझ के अकॉर्डिंग तो ये कह सकता हूँ कि ज्यादा समस्या नहीं होंगी, क्योंकि कानून ही एग्जिस्ट नहीं करता था, तो कोई गाइडलाइंस ही नहीं थी।
3: नहीं, गाइडलाइंस की बात डॉक्टर साहब नहीं है, गाइडलाइंस भी नहीं थी। और दूसरी बात ये थी कि उस समय जो हमको किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ब्लड अरेंज करना रहता था, उसके लिए भी हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। डॉक्टर बोलते थे कि 5 यूनिट 6 यूनिट आपको एडवांस में ब्लड अरेंज करवा के रखना पड़ेगा, तो उसके लिए ही हमको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था।
2: बिल्कुल समझ सकता हूँ, उस टाइम पर कोई सोशल मीडिया नहीं था, आज के जमाने में

0: सारे आई बैंक वेबसाइट से कनेक्टेड है, उस टाइम तो ये सब कुछ नहीं था।
1: तो उस समय हम लोग इस चीजों को काफी मुश्किलों से इन सब चीजों को काफी एक एक बंदे को हम लोग को मतलब इवन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड डोनेशन के लिए उनको लाना पड़ता था। ब्लड डोनेशन का भी उस समय उतना अवेयरनेस नहीं था।
0: बिल्कुल बिल्कुल मैं मान सकता हूँ। तो दिवाली जी आप ये भी बताइए हमारे श्रोताओं को कि जैसे फर्स्ट ट्रांसप्लांट के टाइम पर आपके भाई की एज कितनी थी?
1: फर्स्ट ट्रांसप्लांट मेरे ब्रदर का जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज 1964। फर्स्ट ट्रांसप्लांट 1988 में हुआ था, तो उस समय उनकी एज 24 ईयर्स की थी।
0: ओके सो मतलब फर्स्ट ट्रांसप्लांट के टाइम पर 24 एंड सेकंड ट्रांसप्लांट के टाइम पर
1: 28 29
0: ईयर्स की। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो उस टाइम पर जब पहला ट्रांसप्लांट तो हो चुका था ऑब्वियसली आप लोग एक समस्या से उबर चुके थे, लेकिन जब डॉक्टर्स ने बताया कि दूसरा ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और ये ऑर्गन रिजेक्ट हो गया है या इतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो तब आपके फैमिली का रिएक्शन क्या था? बिकॉज एक समस्या से जैसे तैसे उबरे थे एंड देन दूसरी बार सेम समस्या आके खड़ी हो गई थी दरवाजे पर।
1: अच्छा, दूसरी बार जब समस्या आई डॉक्टर साहब, तो सबसे बड़ा शौक हम लोगों के लिए क्या था कि फादर 92 में रिटायर हो चुके थे और 93 में सेकंड ट्रांसप्लांट मतलब 93 में भैया का किडनी फेल हुआ, तो फर्स्ट ट्रांसप्लांट का तो रिएम्बर्समेंट हुआ गवर्नमेंट से हो गया था। अच्छा, और ट्रांसप्लांट के समय जो रिएम्बर्समेंट की बात थी, उस समय जो हॉस्पिटल से रिकॉग्नाइज थे एमपी गवर्नमेंट के लिए, वो उन लोगों ने जसलोक हॉस्पिटल और बॉम्बे हॉस्पिटल बॉम्बे को किया था। इंदौर का जो चोईतराम हॉस्पिटल था उसको उन्होंने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था रिएम्बर्समेंट के लिए। तो मेरे पिताजी ने काफी लेटर वगैरह लिखकर विधानसभा में भी ये क्वेश्चन उठा था कि क्यों ना चोईतराम हॉस्पिटल में ही जब ये सब चीजें अवेलेबल है और तो फिर मतलब बॉम्बे जाना और बॉम्बे का खर्चा प्लस ट्रांसप्लांट का खर्चा, ये दोनों डबल डबल खर्चों की बात एक पेशेंट को फेस करना, पेशेंट और पेशेंट की फैमिली को फेस करना, ये बहुत बड़ा एक आर्थिक
0: संकट था।
1: हाँ, बहुत बड़ा एक आर्थिक संकट था। सेकेंड ट्रांसप्लांट के समय तो मतलब ऐसा हो गया था कि फादर जॉब में थे नहीं, फादर रिटायर हो चुके थे और हम लोग जस्ट जॉब में आ ही थे, जॉब में आए थे जहाँ पर ऐसी कोई उसकी व्यवस्था थी नहीं रिएम्बर्समेंट की, फिर भी हम लोगों ने कैसे भी करके उसको मैनेज किया और ट्रांसप्लांट करवाया।
0: उस जमाने में करीब कितना खर्चा आया था आपको ट्रांसप्लांट का? दोनों के बारे में जानना चाहूंगा, 88 वाले ट्रांसप्लांट और 93 वाले, दोनों ट्रांसप्लांट के।
1: 88 का जो ट्रांसप्लांट हुआ था उसमें तकरीबन 1 लाख के लगभग खर्चा आया था, और जो 93 में ट्रांसप्लांट हुआ था उसमें तकरीबन 1.5 लाख के लगभग खर्चा आया था।
0: देखिए 1.5 लाख और 1 लाख उस जमाने में कितनी ट्रांसप्लांट का खर्चा आया था, और आज यही सेम सर्जरी का खर्चा लगभग 7 से 8 लाख हो गया है।
1: जी
0: समय
1: जबकि उस समय किडनी दोनों ही हमारे घर की थी, उस समय किडनी की खरीद फरोख्त बहुत ज्यादा होती थी।
0: तो सर आपने किडनी खरीद फरोख्त के बारे में बात करी, तो उस जमाने में तो कोई कानून भी नहीं था, तो ये कोई क्राइम की कैटेगरी में भी नहीं आता था, तो उस टाइम पर
1: कानून भी नहीं था।
0: उस टाइम पर फिर आपने कैसे ये डिसाइड किया कि हम इस ऑप्शन के लिए ना जाके और ये ऑप्शन ट्राई करेंगे कि घर में से ही किसी को देंगे, क्योंकि लोगों को हमेशा डर रहता है? तो जी
1: उस ऑप्शन के बारे में हम लोगों ने इसलिए ज्यादा सोचा नहीं, खरीद फरोख्त के बारे में इसलिए नहीं सोचा क्योंकि उसमें जो सक्सेस वाली बात थी किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो सक्सेस वाली बात थी, उसमें डॉक्टरों का कहना था कि अगर रिलेटिव अगर डोनेट करता है तो उसमें सक्सेस रेट ज्यादा है उस समय के डाटा के हिसाब से, और अगर किसी डोनर से आप लेते हो तो सक्सेस रेट कम रहता है। तो डॉक्टरों का सजेशन यही रहता था कि अगर रिलेटिव की किडनी मिल जाए तो दैट विल बी गुड मैच।
0: ठीक है,
1: इस कारण हम लोगों ने खरीद मतलब किडनी खरीदने की कभी कोशिश नहीं करी, जबकि उस समय चेन्नई वगैरह में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स थे जिसमें डोनर्स की लिस्ट रहती थी, ग्रुप वाइज ब्लड ग्रुप वाइज डोनर की लिस्ट रहती थी, आप उनसे कांटेक्ट करिए, उनसे बात करिए, इवन उनका रेट भी फिक्स रहता था, आप उनको पैसे दीजिए, आप और किडनी ट्रांसप्लांट करवाइए, इस तरह की व्यवस्था उस समय रहती थी। कोई दूसरा और कानून उस समय जैसा कि आपने बताया एग्जिस्ट ही नहीं करता था।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इस अंतराल के बाद आकर अपनी चर्चा को हम जारी रखेंगे।
2: ब्रेक से पहले आइए सुनते हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का अंग दान से जुड़ा अपना व्यक्तिगत अनुभव।
3: कहते हैं जान है तो जहान है, बात सच है, लेकिन जब जान नहीं रही तो क्या हम किसी और को जिंदगी दे सकते हैं? जी हाँ, हम जाने के बाद अपनी आंखें किसी को दे सकते हैं, तो हमारी आंखों से वो दुनिया को देख सकता है, हम अपने दूसरे ऑर्गन दे सकते हैं, दिल दे सकते हैं, और किसी और को जिंदगी मिल जाएगी। मेरी वाइफ मेधा, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और 13 साल उसने जिंदगी और गुजारी। ये तभी हो पाया कि जिसने हार्ट डोनेट किया था उसको ये अवेयरनेस थी कि मेरे जाने के बाद मैं किसी और को एक्स्ट्रा जिंदगी दे सकता हूँ। अगर ये चीज़ हम आप सब समझ जाएं, तो ना जाने कितने लोगों का संसार खूबसूरत हो सकता है हमारे जाने के बाद। हिंदुस्तान में हर साल करीब 5 लाख लोग इसलिए मर जाते हैं कि उनको वो ऑर्गन नहीं मिलते जिससे कि उनकी ज़िंदगी बच सकती है। आप ऑर्गन डोनेट करके हीरो बन सकते हैं। हीरो बनने के बहुत से तरीके हैं, ये भी एक तरीका है हीरो बनने का, कि जिंदगी भर कोई आपकी बातें करेगा। एक व्यक्ति 8 लोगों की जिंदगी बचा सकता है। 8 लोगों को आप ऑर्गन डोनेट करते हैं केवल एक बॉडी से, और यदि आप ऐसा करते हैं तो वो सब लोगों के तो आप हीरो हो गए। तो कितना अच्छा होगा कि इस बात को समझें और लोगों को समझाएं। हमारा मकसद यही है कि ये खबर सब तक पहुंचाएं, सब इस बात को जाने कि एक आदमी 8 लोगों की जान बचा सकता है, उन 8 लोगों के आप हीरो बन जाएंगे। तो आज ही प्लेश करिए और हमारा साथ दीजिए।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार दोस्तों, ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे इंदौर के रहने वाले जो कि आजकल रायपुर में रह रहे हैं विवेक तिवारी जी से। इन्होंने 1993 में अपने भाई को एक किडनी डोनेट करके उनकी जान बचाई थी और ये उनके भाई का सेकेंड ट्रांसप्लांट था। विवेक जी, हम बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले कानून के ऊपर और ये किडनी की खरीद फरोख्त के ऊपर। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 1994 में हमारे देश में कानून आया था और उस कानून में सबसे पहली बात यही कही गई थी कि किडनी बेचना और खरीदना अब दोनों ही कानूनन जुर्म है और ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए और नहीं करने देगी सरकार। तो आपके केस में तो आपने बता दिया कि उस टाइम पर कोई कानून नहीं था तो सब कुछ खुलेआम ये सब चीजें होती थी। तो ये बताइए कि कई बार होता है कि जैसे आपने बताया कि डॉक्टर ने बताया था कि सबसे अच्छा मैच फैमिली में से अगर कोई डोनेट कर दे तो उनका ही होता है, अदरवाइज बाहर से जो किडनी लेंगे आप उसके रिजेक्शन ज्यादा होते हैं, उसकी सक्सेस रेट नहीं होती। लेकिन जो आपका फर्स्ट ट्रांसप्लांट हुआ वो 4 साल में फेल हो गया, तो ये बात तो आपके सामने मतलब गलत हो गई होगी कि सक्सेस रेट इसमें भी नहीं था क्योंकि फैमिली के ऑर्गन मिला था तब भी सक्सेस इतना नहीं हो पाया। इन द सेकेंड टाइम में जब फैमिली के ही देने की बात करी तब तो आप ये ऑप्शन इजीली कंसीडर कर सकते थे ये आर्ग्यू करके। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में बहुत सारे डर भी रहते हैं अपनी चीज को लेके कि हमारी डोनेट करने के बाद खुद की लाइफ का क्या होगा, हम कैसे जिएंगे। और उस टाइम पर इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी कि एक किडनी पर हम आराम से निकाल सकते हैं अपनी पूरी लाइफ। तो इन सब चीजों को आपने कैसे मैनेज किया उस टाइम पर, आपने और आपकी फैमिली ने?
2: इसके बारे में मैंने अपने पिताजी से भी बात करी जो कि उस समय ऑलरेडी किडनी डोनेट कर चुके थे। भैया को उनसे बात करी कि आपको क्या हेल्थ इश्यूज आए, तो मेरे पिताजी ने यही बोला कि मेरे को कोई हेल्थ इश्यूज नहीं आए। उन्होंने मेरे को कभी कोई फोर्स भी नहीं किया कि तुमको किडनी देना पड़ेगा, तुम्हारी विलिंगनेस है, अगर तुम देना चाहो तो ठीक है, नहीं देना चाहो तो कोई दूसरा रास्ता देखेंगे। इस तरह की बात हुई पिताजी से और पिताजी ने ही मेरे को कॉन्फिडेंस दिया कि कोई ऐसा हेल्थ इश्यूज नहीं आता है किडनी डोनेशन के बाद में, आप एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हो। और मैं उनको शिक्षा भी था, वो सब चीजें नॉर्मल जिंदगी ही जी रहे थे। और तो मेरे को मैं बोला कि अगर इस एज में पिताजी की एज उस समय करीब करीब 55-56 ईयर की थी जब उन्होंने किडनी डोनेट करी।
1: ओके। हम आपसे एक सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि आज के जमाने में इतनी जागरूकता होने के बाद भी, आप उस जमाने से तो बहुत ज्यादा जागरूकता बढ़ गई है, बट स्टिल आज भी ये लोग बिलीव करते हैं कि अगर हमने एक किडनी दे दी तो हमारा क्या होगा, हमें कोई हेल्थ इश्यू फेस करना पड़ सकता है। तो जब आपके सामने तो लाइव एग्जाम्पल था, लेकिन आपके जरिए हम उन लोगों को ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन है तो आप जरूर इसे हाँ कहें और आप किसी की जान बचा सकते हैं, अपने परिवार के सदस्य की। तो कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे दूर के रिश्तेदार होते हैं और जो फैमिली वाले होते हैं वो भी हमें हमेशा नेगेटिव ही बताते हैं इन सब चीजों के बारे में, बट आपके केस में ऐसा नहीं था क्योंकि आपके सामने लाइव एग्जांपल था, एक बार पापा ऑलरेडी डोनेट कर चुके थे और उन्होंने कभी कोई इशू फेस नहीं किया। 1993 के बाद आपके भाई, अब उनकी सिचुएशन कैसी है?
2: एक्चुअली 93 के बाद भैया का स्वास्थ्य वगैरह सब ठीक चल रहा था और भैया यूनिवर्सिटी में उस समय तक वो अपनी हायर स्टडीज कर चुके थे। आफ्टर फर्स्ट ट्रांसप्लांट उन्होंने हायर स्टडीज कंप्यूटर में करी थी क्योंकि उस समय कंप्यूटर का सेक्टर बूम चल रहा था। तो फिर उन्होंने बाद में अपना स्किल बढ़ाया और कंप्यूटर्स में वो प्रोफेसर बन गए और यूनिवर्सिटी में काम करना चालू कर दिए थे। पहले रीडर के पोस्ट में उनका अपॉइंट हुआ था, फिर आज की डेट में वो प्रोफेसर हैं। और 93 से लेके 2006-07 तक उनका जो मैंने किडनी उनको दी थी वो वर्किंग रही और फिर उसके बाद वो किडनी फिर वापस फेल हो गई 2007 में। उसके बाद से भैया वापस डायलिसिस में है, आज की डेट में अभी भी अलाइव है और हालांकि बहुत ज्यादा वीक है, अभी चल फिर भी नहीं पाते थे अच्छे से, व्हील चेयर में ही कॉलेज भी जाते हैं और वापस उनका डायलिसिस आज की डेट में चालू है। हफ्ते में 3 दिन उनका डायलिसिस होता है, तो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज तो उनके पास अब जाके है। पिछले 3-4 साल से काफी ज्यादा हेल्थ इश्यूज वो फेस कर रहे हैं और हम लोग उनको पूरा

0: पर उनका इतना स्ट्रांग है कि वो खुद खुद अपनी कार चला के डायलिसिस करवाने जाते थे और डायलिसिस करवा के वापस अकेले ही अपना घर में आ जाते थे। तो उसमें खुद अपना सेल्फ मैनेज कर लेते थे। लेकिन अभी 3-4 साल से वो बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं, तो
1: जी
0: अभी उनको ड्राइवर ही लेके जाता है और दूसरे कुछ हेल्थ सपोर्टर रखे हुए हैं, हम लोग अपॉइंट किए हुए
1: जी
0: हैं जो उनका
1: आप
0: टेक केयर करते रहते हैं, और हम लोग भी आते जाते, हम लोग भी उनकी टेक केयर पूरी तरह से करते रहते हैं।
1: कोई प्लान है
0: जी जी
1: उनके किडनी ट्रांसप्लांट का? अपने
0: नहीं
1: डॉक्टर
0: नहीं
1: से बात
0: आप
1: करी?
0: नहीं सर, अब क्या है कि उनकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है, तो डॉक्टरों ने हार्ट ट्रांसप्लांट का हम लोगों ने उतना थिंक ओवर भी नहीं किया क्योंकि वो काफी वीक हो चुके हैं, तो ऐसा था ट्रांसप्लांट की कभी बात।
1: आपकी अगर आपकी बात करें तो आप इतने साल हो गए किडनी डोनेट के हुए, कभी आपको इस वजह से कोई इश्यू फेस करना पड़ा हो, या अब आपकी हेल्थ के बारे में अगर बात करें तो किस तरह से आप इस चीज को देखते हैं?
0: मैं अभी तक मैं एक नॉर्मल लाइफ ही जी रहा हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह की हेल्थ इश्यूज मेरे साथ में किडनी को लेकर नहीं है। हाँ, एज के साथ में जो हेल्थ इश्यूज रहती है, बीपी है, बॉर्डर लाइन पे शुगर भी है, जिसका कि इलाज मैं करवा रहा हूँ, उसके मेडिसिन लेते रहता हूँ, और दूसरे कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है मेरे को। इवन मैं एक हैप्पी फैमिली में रह रहा हूँ, मेरे मैरिज 1998 में हुई है मेरी मैरिज।
1: मैरिज की बात
0: जी
1: करें तो एक और बात बताइए सर हमारे श्रोताओं को कि किडनी
0: जी
1: ट्रांसप्लांट, किडनी डोनेशन की वजह से कभी मैरिज में कभी कोई समस्या आई? जब शादी हो रही हो, फिक्स हो रही हो, आपने ऑब्वियसली बताया होगा अपने पार्टनर को, होने वाले पार्टनर को, क्या ऐसा हो
0: जी
1: चुका है, तो कभी कुछ ऐसे रूढ़िवादी सोच का सामना करना पड़ा हो?
0: नहीं सर, ऐसा ऐसा सोच का सामना तो करना पड़ता, लेकिन मैंने स्टार्टिंग से ही डे वन से, जिस दिन से मेरी शादी की बात चल रही थी, तो डे वन से हम लोगों ने इस चीज को कभी भी छुपाया नहीं कि मैं किडनी, मतलब इस चीज को हम लोगों ने आगे रख के बोला कि भाई देखो, इन्होंने किडनी डोनेट करी हुई है, आप जो भी रिश्ते आते थे तो उनसे हम सबसे पहला क्वेश्चन यही करते थे,
1: जी
0: सबसे पहले उनको यही अवेयर करवाते थे कि ये किडनी डोनेट कर चुका हूँ मैं। तो कुछ लोगों ने रिजेक्ट भी किया, फिर मेरी मिसेज ने, जो कि डॉक्टर, जो कि अभी अर्चना तिवारी है मेरी मिसेज का नाम, वो यहाँ पर संस्कृत में अभी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर भी है, तो
1: अच्छा
0: उन्होंने इस चीज को बड़े हेल्दी वे से एक्सेप्ट किया कि जो बंदा अपने भाई के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर सकते हैं, तो अपनी फैमिली के लिए वो के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस पॉजिटिव सोच के साथ में उन्होंने
1: बिल्कुल
0: मैरिज मैरिज के लिए आगे आई और मैरिज हुआ। मेरे आज की डेट में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा मेरा इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में पढ़ रहा है, और मेरी बड़ी बच्ची अभी यहाँ पर रायपुर में ही BSc कर रही है।
1: बहुत बहुत अच्छी बात है ये, और बहुत ही कम लोग होते हैं जो इतनी समझदारी का परिचय देते हैं कि
0: जी
1: उन्होंने
0: जी जी
1: इतनी अच्छी सोच रखी है आपके प्रति और आपके जो काम के प्रति।
0: जी
1: तो
0: जी सही
1: बिल्कुल हम भी
0: बात।
1: आपको शुभकामनाएं देते हैं इस चीजों के लिए कि आज आप एक बहुत अच्छी हेल्थी फैमिली लाइफ जी रहे हैं।
0: थैंक
1: विवेक जी, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे और ब्रेक के बाद अपने शो को जारी रखेंगे और अपना शो कंक्लूड करेंगे।
0: यू।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार दोस्तों, हम वापस आ गए हैं छोटे से अंतराल के बाद। हम बात कर रहे हैं विवेक जी से, और जो जिन्होंने अपने ब्रदर को अपनी एक किडनी डोनेट करी थी। विवेक जी, आप हमारे श्रोताओं को ये भी बताइए कि कई लोग सोचते हैं, इवन आज के जमाने में भी सोचते हैं कि हम किडनी डोनेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारी खुद को हेल्थ इश्यूज आएंगे, या फिर अंग दान को लेकर सोच सकते हैं। हमारे समाज में बहुत तरह की भ्रांतियां प्रचलित है कि अगर हमने अंग दान कर दिए तो फिर हमारे नेक्स्ट वर्क में हमें अंग नहीं मिलेंगे, या फिर हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, हम मोक्ष नहीं मिलेगा, या हमारे रिचुअल्स जो अंतिम क्रियाएं हैं वो डिले हो जाएंगी। इन सब तरह के लोगों को आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे अंगदान के ऊपर?
2: अंगदान एक, जैसा कि अपनी पहले भी बात हो चुकी है, अंगदान एक महादान है और जिसमें आप डायरेक्ट किसी की लाइफ सिक्योर कर रहे हो, लाइफ बचा रहे हो। तो इसमें इस तरह की कोई मोक्ष और इस तरह की कोई चीजें आड़े नहीं आना चाहिए, और बल्कि इस चीज को बड़े हेल्दी वे से लेना चाहिए। आज की तारीख में बहुत सारे एग्जांपल्स हमको देखने को मिलते हैं कि किसी की ब्रेन डेथ हो गई है और उन्होंने अपनी पूरी बॉडी डोनेट करी है, और उसमें कई लोगों की जान, कई लोगों को अंगदान मिलता है जिसमें कि आईज से लेकर स्किन से लेकर किडनी से लेकर इवन हार्ट ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट तक होते हैं। और तो ऐसा कोई, ऐसा कुछ कमजोर हो जाओगे या आप लाइफ में कुछ इफेक्ट आएगा, ऐसा मेरे को आज की डेट में 30 साल हो गए, 15 जून 2023 को पूरे 30 साल हो जाएंगे मेरे को किडनी डोनेट किए हुए। 15 जून
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी ये बताना चाहूंगा अपने श्रोताओं को, जैसे विवेक जी ने बताया कि एक इंसान अपने अंगदान के बाद करीब 9 लोगों की और 50 से ऊपर लोगों की जिंदगियां बेहतर बना सकता है, 9 लोगों की जिंदगियां बचा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है कि आपके कारण आपने अपने अपनी जिंदगी तो जी ली, लेकिन मरने के बाद क्या? तो मरने के बाद जब आपका परिवार देखता है कि आपके कारण कितने लोगों की जिंदगियां रोशन हो गई, तो एक बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आती है, और बहुत ही अच्छी बात है ये। पर ये काम गलत हो ही नहीं सकता जब आप इतने परिवारों की जान बचा रहे हैं। तो मैं भी आपसे यही अपील करना चाहूंगा, जैसा कि विवेक जी ने कहा कि हर इंसान को अपने अंगदान करने का फैसला जरूर करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो अंगदान हो भी पाए या नहीं, बट ये तो भगवान की मर्जी है। बट आप अपनी तरफ से अपना पार्ट जरूर प्ले करें, अपना किरदार जरूर निभाएं अंगदान के लिए। हाँ कहें, अपनी फैमिली अपने दोस्तों को इस बारे में जागरूक करें कि हाँ आपके हाँ से कितने सारे लोगों की जिंदगी बच सकती है। विवेक जी, हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे शो में आने के लिए, हमें इतना समय देने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताने के लिए। हम आपको भी शुभकामनाएं देते कि आप इसी तरह से स्वस्थ रहें, आपका परिवार खुश रहे, और जो आपके ब्रदर हैं उनकी भी हेल्थ में सुधार आए ताकि वो अपनी आगे की लाइफ अच्छे से निकाल पाए। जी धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: आओ मिल के एक दिया जलाएं, अंतरतम की विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिल के एक दिया जलाएं, एकता का परचम चह ओर फहराएं। आओ मिल के एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिल के एक दिया जलाएं, दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का। जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं।
4: आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंग दान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120 3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंग दान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।
3: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चम ओर फहराएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का। जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं।
4: आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंग दान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120 3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंग दान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

0: 91.1 में लव ओमेगा हर्ट्स पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब समय है समाचारों का, तो आइए सुनते हैं समाचार।
1: नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। उन्होंने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य है। प्रधानमंत्री का ये बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्ष ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों विशेष रूप से कांग्रेस से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग की अपील की।
2: सरकार ने ये नीट पेपर लीक के बाद जितना कदम उठाया री एग्जाम करा करके और बिना विलंब बिना देरी का रिजल्ट डिक्लेयर करा के और भविष्य में ऐसा ना हो उसको भी विस्तार से सदन में देश के सामने में बताना जरूरी है। फिर हमने देखा कि ऑपोजिशन पार्टी के फिर से हंगामा करके चर्चा के बाद अनेक नहीं हुई, ये चौथा दिन हो गया और हम पहला दिन पेपर लीक पर चर्चा के लिए पूरा तैयार हो गए हैं, फिर क्यों भाग रहे हैं चर्चा से।
1: राज्यसभा में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पहले स्थगन के बाद जब राज्यसभा दोपहर 12 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है लेकिन पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्ष की आलोचना करते हुए उसके आचरण को अत्यंत गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष न तो चर्चा चाहता है और न ही सदन को चलने देना चाहता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले नीट पर चर्चा की मांग की थी और सरकार ने जवाब दिया था कि वो नीट परीक्षा के पेपर लीक सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने कहा कि अब कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की नई मांग रखी है। एनडीए और विपक्षी सांसदों ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य पर हर स्तर पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह चेन्नई स्थित राज्य कांग्रेस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। संवाददाताओं से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने कहा कि कांग्रेस नीट के खिलाफ छात्रों को गुमराह कर रही है और राष्ट्र के हित के विरुद्ध युवाओं को भड़का रही है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान किया और एक स्वतंत्र खुले समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा तब तक संधि को बहाल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सचू ने
2: पांच YouTube वीडियो को लाइक करके पांच लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
2: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
2: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देख।

0: है ना, ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए। इटमीन्स ये जेन्युइन है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
0: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
2: क्या बात है यार।
3: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
0: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
3: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। कोई भी अजनबी अगर आपको ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करने के लिए कहें तो उसे बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना पूरी जानकारी के कोई भी वित्तीय लेन देन ना करें और उनकी लालच भरी बातों में तो बिल्कुल ना फंसें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
4: अब उठो, देश के भाग जगाने हैं आपको। निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं आपको। अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है। अब ठान के मुद्दे स्वच्छता की ज्योत जागी रहे। स्वच्छता की ज्योत जागी रहे।

0: पर एचआईवी कभी न दूं।
1: अगर आप मां बनने वाली हैं, तो एचआईवी टेस्ट जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में सलाह और एचआईवी टेस्ट मुफ्त है और गोपनीय भी। बच्चे को एचआईवी से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है।
2: एक कदम जिंदगी की ओर।
3: जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी फरेबी चाल चलनी है चल लो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए तो उस समय हैरान मत होना, उस समय परेशान मत होना, उस समय घबराना मत, क्योंकि जो आपने किया है अगर छल किया है, कपट किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो कई गुना होकर आपके पास जब लौटेगा उस समय आश्चर्य मत करना, क्योंकि कर्म की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा। कर्म के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। जय बिहारी जी की।

0: अरे भैया, ये आप सबने हेलमेट क्यों पहना है? ये तो बाइक वाला हेलमेट है ना।
1: अब आप नहीं पहन रहे तो सोचा हम ही पहन लेते हैं।
2: असलियत में हेलमेट किसको शोभा देता है ये तो सबको पता है। बाइक चलाते वक्त सर बचाएं, हेलमेट पहनें। Wear a helmet always, because helmet saves.
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है। पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्यों सुबह से मुंह फुला के घूम रही है ये?
6: मेरी बीवी को पता चल गया मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
5: किससे?
6: वो मुझे भी नहीं पता, वो बस इसे ही पता है, रात को सपने में देखा था ना।

दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूं आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

291.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिता के साथ। तो आइए श्रोताओ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.9 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी

दोस्तों पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। बिल्कुल आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों पंजाबी गीतों का कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी आशीर्वाद रुचिका के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला पंजाबी गीत।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सचिन है।
2: पांच YouTube वीडियो को लाइक करके पांच लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
2: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
2: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मीन्स ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
2: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
3: क्या बात है यार।
4: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
2: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
4: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। कोई भी अजनबी अगर आपको ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करने के लिए कहें तो उसे बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें।

0: लेन देन ना करें और उनकी लालच भरी बातों में तो बिल्कुल ना फंसें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
1: अब उठो, देश के भाग जगाने हैं आपको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं आपको। अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है, अब ठान के मुद्दे स्वच्छता की ज्योत जागी रहे, स्वच्छता की ज्योत जागी रहे।

0: पर एचआईवी कभी न दूं।
1: अगर आप मां बनने वाली हैं, तो एचआईवी टेस्ट जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में सलाह और एचआईवी टेस्ट मुफ्त है और गोपनीय भी। बच्चे को एचआईवी से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है।
2: एक कदम जिंदगी की ओर।
3: जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी फरेबी चाल चलनी है चल लो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए तो उस समय हैरान मत होना, उस समय परेशान मत होना, उस समय घबराना मत, क्योंकि जो आपने किया है अगर छल किया है, कपट किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो कई गुना होकर आपके पास जब लौटेगा उस समय आश्चर्य मत करना, क्योंकि कर्म की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा, कर्म के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। जय बिहारी।

0: अरे भैया ये आप सबने हेलमेट क्यों पहना है? ये तो बाइक वाला हेलमेट है ना।
1: अब आप नहीं पहन रहे तो सोचा हम ही पहन लेते हैं।
2: असलियत में हेलमेट किसको शोभा देता है ये तो सबको पता है। बाइक चलाते वक्त सर बचाएं, हेलमेट पहनें। Wear a helmet always, because helmet saves.

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: सुबह से मुंह फुला के घूम रही है ये।
3: मेरी बीवी को पता चल गया मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
2: किससे?
3: वो मुझे भी नहीं पता, वो बस इसे ही पता है, रात को सपने में देखा था ना।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ए तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर होई हो कार्यक्रम लेके माटी दी महक तां श्रोताओं कर देने कार्यक्रम दा आगाज इस प्यारे दे गीते कने तो तुहां सारे इन्ने बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला कने गूंज अपने बंदी

यह तो हाँ सारे दा रेडियो गुंजन धर्मशाला इन्हें तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक आशोतों बढ़ देना कार्यक्रम जग गए इन्हें सुन देनी कोर प्यारा दिया गीत।

हाँ बोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तुहां सारिआं ट्यून कीते है अपना समुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने इस वक्त कार्यक्रम चलिआ है माटी दी महक। श्रोताओं सुनदे ने इक और प्यारा दिया गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो हाँ सारे ट्यून कितने है अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला। इन्हें तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक। तो श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुनते निक और प्यारा दिया गीत।

इस वक्त तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना दिन माटी दी महक अपनी रेडियो दो शशि करने ता श्रोताओं बढ़ दिन कार्यक्रम चल गए कने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

यह है तुहां सारें दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तुहां सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना दे न माटी दी महक अपनी रेडियो तो शशि कन्ने तो शो तो बढ़ दे न कार्यक्रम च अग्गे कने सुन दे न एक और प्यारा दिया गीत।

यह है तुहां सारे दा रेडियो गुंजन धर्मशाला इन्हें तुहां सारे कार्यक्रम सुना दिन माटी दी महक आशोतों बढ़ दिन कार्यक्रम जग गए इन्हें सुन दिन एक और प्यारा दिया गीत।

तुहां बोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तुहां सारिया ट्यून किते है अपना समुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने इस वक्त कार्यक्रम चलिया है माटी दी महक। श्रोताओं सुन

91.2 MHz पर तो हाँ सारे ट्यून कित्ते है अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक तो श्रोताओं बढ़ते ने कार्यक्रम च अगे कने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

इस वक्त तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देन माटी दी महक अपनी रेडियो दो शशि कन्ने ता श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम च अग्गे कन्ने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सचू ने
2: 5 YouTube वीडियो को लाइक करके 5 लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा
2: है? हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
2: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मीन्स ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
2: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
3: क्या बात है यार।
4: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
2: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे।
4: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। कोई भी अजनबी अगर आपको ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करने के लिए कहें तो उसे बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें।

0: लेन देन ना करें और उनकी लालच भरी बातों में तो बिल्कुल ना फंसें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
1: अब उठो, देश के भाग जगाने हैं आपको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं आपको। अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है। अब ठान के मुद्दे स्वच्छता की ज्योत जागी रहे, स्वच्छता की ज्योत जागी रहे।

0: पर एचआईवी कभी न दूं।
1: अगर आप मां बनने वाली हैं, तो एचआईवी टेस्ट जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में सलाह और एचआईवी टेस्ट मुफ्त है और गोपनीय भी। बच्चे को एचआईवी से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है।
2: एक कदम जिंदगी की ओर।
3: जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी फरेबी चाल चलनी है चल लो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए तो उस समय हैरान मत होना, उस समय परेशान मत होना, उस समय घबराना मत, क्योंकि जो आपने किया है अगर छल किया है, कपट किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो कई गुना होकर आपके पास जब लौटेगा उस समय आश्चर्य मत करना, क्योंकि कर्म की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा। कर्म के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। जय बिहारी जी की।

0: अरे भैया, ये आप सबने हेलमेट क्यों पहना है? ये तो बाइक वाला हेलमेट है ना।
1: अब आप नहीं पहन रहे तो सोचा हम ही पहन लेते हैं।
2: असलियत में हेलमेट किसको शोभा देता है ये तो सबको पता है। बाइक चलाते वक्त सर बचाएं, हेलमेट पहनें। Wear a helmet always, because helmet saves.
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है। पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्यों सुबह से मुंह फुला के घूम रही है ये?
6: मेरी बीवी को पता चल गया मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
5: किससे?
6: वो मुझे भी नहीं पता, वो बस इसे ही पता है। रात को सपने में देखा था ना।

नमस्कार श्रोताओं, एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेडी गुंजन धर्मशाला दो है सभी ट्यून कर रहा और हूँ सचिन कपूर हाजिर बुजुर्गो कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा ले करे। बहुत बहुत स्वागत है जनाब सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा। कैसे हैं तो है सब, उम्मीद करना हो तो सब ठीक भुने खरे भुने और अपने घर खुश भुने। तो हूँ सचिन कपूर हा और इस गाद्य कार्यक्रम में तो सब श्रोता बनी सकते हैं अपना पसंदीदा गीत की ऐसा हो नहीं सकते ना अपने क्षेत्र रे जानकारी किया सो वो के साझा कर सकते हैं श्रोताओं। आइया सभी पहले तो तू पता है धर्मशाला भी मौसम रे जानकारी किया सो तू हो गया है शेयर करते हैं है ना। तो व्याकनी बरखा लग रही काफ़ी तेज तरार बरखा किया सो भूई हा श्रोताओं। और अगर यह गल करिए रहा है कि तूने मतलब ठंडे इलाके मंज न और इतना अच्छा है गर्म करूँ इन शोतों की अगर गल करूँ तो पंजाब रहा टेम्परेचर वे समय की 30-33 डिग्री सेल्सियस है मतलब है ना। और इंदे हिमाचल में ये रेव करता है खास कर इंदी धर्मशाला में किया 20-22 डिग्री तापमान के शोतों सो रेव करता है ना। तो एम का तापमान किया सोरे उ करता हा। बहरहाल कार्यक्रम मंच तुसु एग्जैक्टली है दस इंधन के क्या इस समय टेम्परेचर है और तो सब श्रोता कॉल कर सकते हैं अपना पसंदीदा गीत होने सकते हैं श्रोताओं 7018 8809 पर नंबर अक मौके फ्री 7018 8809 पर कॉल कर सकते हैं। बहरहाल इस समय रे हम गल करूँ श्रोतों तो 18 डिग्री सेल्सियस तापमान है और बरखा किया सो रहने हैं जी हाँ हल्के हल्के बरखा गए श्रोतों सो लगे ही रहने हैं ये मौसम इन्ना ही रहना है श्रोतों 18 डिग्री सेल्सियस इस समय का तापमान है। और आइए जी आगाज कर लेते हैं इन कार्यक्रम रहा पहले है ना जी। आगाज तो बाद श्रोतों तो है जुड़ी सकते ना वो होगी 7018 8809 पर नंबर एक मौके फिर 7018 8079 पर कॉल कर सकते हैं। बहरहाल हाँ जी बिल्कुल आगाज असू करना है इस गीता सोगे ता चलिए श्रोता है बिल्कुल के असो कनेक्ट भुवन और तू सब भी जो होने ये प्यारा दे गीत आकाश इस गीत असोगे और फिर कुछ खास जानकारी लेकर आए हाजिर।

0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और हम सचिन कपूर हाजिर भुआ तुंदे सभी ये रेडियो सेट में सभी रे रेडियो सेट में बड़ा बड़ा स्वागत है मोटा मोटा स्वागत है। बहुत सारी जानकारी हिन जो असूतुस होगी शेयर करनी न साझा करनी हिन इन द श्रोतागण भी कैन सो धीरे धीरे अस होगी कनेक्ट लगे हिन श्रोताओं पूरा बिल्कुल कनेक्ट कर दे हिन और सभी श्रोता जो कनेक्ट भी करते हैं और आज तू दसना चाहते हैं श्रोतों आज है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY पर किया सो तेरे बारे में थोड़ी करी किया सो जानकारी तुस हो गया सो जरूर शेयर करनी है साझा करनी है तो चलिए इंदे श्रोतागण अस हो गए कनेक्टेड हैं और कजो कि बरसाला लगुरा हा शोतों और बरसाले मंच तो सब बाखूबी जानते हैं कि काफ़ी घर जो कि असो नुकसान बुंदा काफ़ी जगह के असो डंगे भिड़े के नो लुड़े गंदे हैं ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान बुंदा हा शोतों है ना बरसाले मंच फसला जो भी काफ़ी ज़्यादा किया सो मतलब हिमाचल में ये सोच लिया तो है कि ये अख्तर फर्क की है जी मतलब ट्रेंड ही चली पूरा कि जहाँ बरखा ना बुनी तो हमने फर्क ये सब बरखा दिंदा हा अब तो चलो ठीक है बरसाला लेकिन बुंदा था कदी इन कणक बर्बाद बिछ गंदी है ना कदी क्या फिलहाल तो इनके श्रोतागण अस हो गए कनेक्ट बुझे गुछू रहे इन श्रोतों तो सब हूँ करते हैं इस समय आर जे सचिन कपूर जो वेड़ी गुंजन धर्मशाला मंच और ये बिल्कुल लाइव कार्यक्रम चल रहा तो अज इस लाइव कार्यक्रम में श्रोतों असू जो है सो गल करने हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे बारे हैं थोड़ी करी कि असो जानकारी तुस हो गया सो जरूर शेयर करने हैं जितने भी हो सकते उतनी जानकारी तू हो गया है शेयर जरूर कर ले श्रोतों बहरहाल पर श्रोतागण असू के कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी।
1: नमस्कार महाराज जी।
0: जी महाराज नमस्ते नमस्ते क्या हाल चाल।
1: बस उस मालिक दी मुज्जन जनाब।
0: बिल्कुल कौन बोलूं देन और कड़ी थों बोलू कर देन जरा दस दिया अपने श्रोता जो।
1: हां जी हरदेव बल्लूगढ़ दा दाद हूं।
0: अच्छा
1: जी महाराज।
0: जी महाराज ता क्या काम कर लू रहा कदे कदे मौसम तुंदी किनारी।
1: मौसम तो जनाब बरखा लग रही है इस वक्त तो मौसम ठीक है कोई बरखा न थी।
0: अच्छा
1: जी।
0: जो कि आजकल बरसाला और बरसाले की असो काफी ज्यादा नुकसान की असो बुंदा है ना जी। जी हमें वो घाटी में इतना नुकसान बुझेगो इतने घर और नुकसान बुझो तब करखा न करखा पूरे हिमाचल में की असो करखा न करखा नुकसान की असो जरूरी बुझो करता है पिछले कुछ साल थों अगर है ना ये पिछले कुछ साल थों ट्रेंड बल्ले सकते कि चलो वहा तुंदी किनारी सब कुशल मंगल है कोई ऐसा वैसा नुकसान था ना।
1: बिल्कुल ठीक ठाक महाराज जी।
0: बिल्कुल ठीक है।
1: हाँ जी परे आक गल है ना आजकल
0: जी
1: के आजकल मतलब औरता के अंशो बसा पर चढ़ दी।
0: अच्छा
1: ते चढ़ दी तो तीन जड़े दुपट्टे होंदे लाउदे आशा गुंडू आह गुंडू गणेंदे ने
0: गुंडू गुंडू गणेंदे
1: हां दुपट्टे होंदे लाउदे चादर होंदे लावे तीन कई बड़े लंबे होंदे लाउदे
0: जी
1: तो जस भगत होश ना लगदी ने
0: जी
1: खिड़की खोल ली चो जट बोले क्या करे महता पहले तू अपने दुपट्टे देख ली है फिर बोलने फिर बोलना कसूर को ड्राइवरे का फिर मेरे ऐसा कम ना करना चाहता
0: जो तुगी घटना घटित भो तो है वेड़ी गुंजन रे माध्यम तो हजारों लख मनु तक की असो पहुंचाया तुम्हारा बहुत शुक्रिया जी। और अक्सर अपने श्रोता थो यही उम्मीद करते हैं कि जहाँ भी कुछ इस प्रकार की घटना घटित बो जत्थों आक मैसेज की सो कन्वे भू सगा कम्युनिटी जो सो गल की सो जरूर अपने माध्यम तो की सो रेडियो मंज रखू करा हरदेव जी तो अक्सर रख दे हिन तुंदा तहे दिल तो शुक्रिया अदा करनो जी।
1: जनाब सुननी कोई कुदा गाना सुनाई दिया जी।
0: अच्छा चलिए जरूर सुना ले जी, तुंदी फरमाइश जरूर पूरी कर ले है।
1: ठीक है महाराज जी।
0: महाराज नमस्ते।
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते। श्रोतों एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वीडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम हिंदी अपनी का पार से सचिन कपूर सोगे लाइव होने कर देन इन दे अगले श्रोता सोगे कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी।
2: नमस्ते।
0: नमस्ते। कौन बल्लून देन और कड़ी थों बल्लून देन है?
2: कंडी थों वर्निका।
0: वर्निका जी का स्कूल है पर देन तो है
2: गुरुकुल
0: धर्मशाला। क्या बात है। कस क्लास में पढ़ते हैं?
2: यूकेजी।
0: अच्छा ठीक है। ता वर्णिका जी कदे लगदा तू सो स्कूल गाना?
2: अच्छा।
0: अच्छा की बहुत अच्छा?
2: बहुत अच्छा।
0: अच्छा चलिए ठीक है। तब वर्णिका जी इस कार्यक्रम जो यूकेजी में तो है पढ़ो कर देना, कितने महीने तो होने कर देना इस कार्यक्रम जो?
2: बहुत महीने।
0: ठीक है। कदे लगता है अपना कार्यक्रम?
2: बहुत अच्छा।
0: चलिए ठीक है वर्णिका जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगो तुसो की गल करी करी। कौन दिन गीत तो सही? हाँ जी
2: थैंक यू।
0: वेलकम। कौन दिन गीत होना चाहते वर्णिका जी? तो
2: मिंज।
0: हाँ जी
2: मेरी मासी का मिंज।
0: मेरी मासी
2: छिंज।
0: अच्छा छिंज। वर्णिका जी पूरा गीत दस ले मुझे समझ ना आई। मेरी मासी छिंज तो है बल्लो आ कंचन मासी। अच्छा कंचन मोगुरा गीत होना तुसु?
2: हां जी।
0: क्या गीत तेरे बोल इन छिंज?
2: छिंज।
0: क्या बात है, तो है अपनी मासी जो प्रमोट कर देन है ना। चलिए ठीक है वर्णिका जी, जरूर होना ले तुसु ये गीत है। ठीक है वर्णिका जी, थैंक यू। नमस्ते।
2: धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी। धन्यवाद। श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन हाँ और हूँ सचिन कपूर हा। ये इन दे श्रोता के अनुसवासों के जुड़दा हिंद तत्व है अरे उन श्रोतों के अग पहले बुजुर्ग जो हरदेव जी थी तैयारी उम्र लगभग 75 साल तैयारी उम्र है सो भी असू होगी जुड़दे इस कार्यक्रम में और अक बिल्कुल यूकेजी में जो प्यारी दे बच्चे पढ़ दिया सो भी असू होगी जुड़ दिया। तो इस एक कार्यक्रम भी एक खासियत है और एक कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ इस कार्यक्रम भी यूनिकनेस की असो ही है कि अक 75 साल रहे बुजुर्ग भी असू होगी किया सो जुड़ो करते हैं और अक बिल्कुल हल्के ने बच्चे की सो भी असू होगी जुड़ो कर दी हा। बहरहाल तो कार्यक्रम जो है आगू बढ़ाते हैं शोधों फरमाइशरा दौर की आसो करते हैं अब पूरा पहले वर्णिका जी तुंदी फरमाइश भी है जरूर पूरी कर ले पहले सुनो भूंकुरा गीत की आसो हूँ लेन देन बने रहे तो सब बार जाए सचिन कपूर सो की गूंज अपने बन रही।

0: बिल्कुल लाइव तंदे वीडियो सेट पर बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन हाँ श्रोतो कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा मंच आइए जी। जी कि तो सब श्रोता जानते हैं कि इस वक्त तो है रेडी गुंजन सो की बन रहे और अपना गाथा कार्यक्रम की है सो बाखूबी हूँ कर दे रेडी गुंजन धर्मशाला मंच हिंदी अपनी गप्पा कार्यक्रम रा ना श्रोत और इस कार्यक्रम जो नाचीज सचिन कपूर जो सो होस्ट करता है। तो चलिए इस कार्यक्रम में जी कि तो सब बाखूबी जानते हैं कि बहुत सारी जानकारी है तो सो की अपनी गदियाली बोली माँ की सो साझा कर दे बहुत सारी योजनाएँ की सो तो सो गया है शेयर लगे हैं ना पे करना और तुम्हारी फरमाइश अब है पूरी कर दे हिन सोगी जो इंदे क्षेत्र है या इंदे क्षेत्र थो बाहर है जो इंदे श्रोतागण तिन्यों अह तुसोगी की असो रूप रूप ही करवंदा है हिन तो पर हाल अगले श्रोता सोगी कनेक्टेड हिन। नमस्ते जी,
1: द पर्सन यू आर हैज पुट योर कॉल।
0: चलिए जी, यानी कॉल होल्ड पर बुझी थी है डिसकनेक्ट करी था। फिलहाल श्रोता हूँ जो बो माँ बुआ सो वाकई में ही बो माँ बादल फटने थो कि सो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ जी कि यह चर्चा करो कर दिन और मौके पर डीसी और एसडीएम भी कि सो प्रभावित क्षेत्र माँ के सो तिया दौरा करो और तड़ी पुजे थी है श्रोता हूँ। इवन कि जो तड़ी अरे विधायक ने केवल सिंह पठानिया जी शाहपुर विधायक एवं उप मुख्य सचेतक भी हिन सो है ना। केवल सिंह पठानिया जी ये वर्तमान में गए सो वर्तमान में इस समय सो विधानसभा अपनी क्षेत्र में निन हिन निन ना बाहर न अपनी विधानसभा थो करखा बाहर हिन श्रोत और बाहर भूने रहे बावजूद भी तिन्या लगातार स्थिति पर नज़र बनाए रख रहे थे और तिन्या वीडियो कॉल रहे माध्यम थो किया सो प्रभावित परिवार थो बातचीत कर त्यारा दुख किया सो साझा करो श्रोत और तिन्या भरोसा दुआ हुआ कि सरकार के या प्रदेश सरकार के या सो हर प्रभावित व्यक्ति वे सोगे के सो मजबूती हो के खड़ रहे और राहत कार्य में के सो किसी भी प्रकार की कमी के सो तिन्या ना ईना देनी। हाँ जी बिल्कुल, और इसी बीच आऊँ दसना चाहता कि प्रभावित जो मनु थी है तिया रोए रोए करे अपना अपनी दास्तां किया सो बयां करे है श्रोतों और वाकई में ना कि कई अरसे लगे गंदे कई जमाने लगे गंदे ने अपना आशियाना बढ़ाने वास्ते और पल भर में कि सो कुदरतरी कहर थो या कुदरतरी मार थो है बलन तो पल भर में किया सो आशियाना है टूटे बजे गंदे सो सो आशियान है क्या ना सो बिखरी गंद इन श्रोतों। बहरहाल श्रोतागण कनेक्टेड है। नमस्ते जी।
2: हेलो, नमस्ते भाई, क्या हाल
0: है? बहुत बढ़िया जी, तुंदा आशीर्वाद है। कौन बोलूं देन और कड़ी थों बोलूं देन?
2: हूं चमन बोलूं देन, नरवाने थों।
0: नरवाने थों क्या ना जी तुंदा शुभ ना?
2: हां जी,
0: अजी तुंदा शुभ ना?
2: ना जी, चमन चमन बोलूं देन नरवाने थों।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा जी जी, ठीक ठाक ना
2: जी? बढ़िया है बोला।
0: बहुत बढ़िया जी, आशीर्वाद है सभी रा तुंदा सियाने रा।
2: ये और सब ठीक ठाक ना?
0: बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया।
2: आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस तो मैं इस दिन कुछ तक गल कर लेंगे।
0: जी जी जी,
2: इधर में रेडियो अंदर बिल्कुल प्रसारण हो रेडियो रा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: रेडी भी भेजे जानकारी लोकल लोकल तक पूछना चालू हुई थी
0: आज के दिन।
2: जी
0: जी,
2: पहले जी रेडियो मेडी में शॉर्ट वेव दो चैनल में चलता होता और बड़ा घट रेडियो होती है देखने
0: बहुत कम।
2: तो आज फिर रेडियो मतलब इतने सालों बाद 2019 बाद फिर थोड़े लोग रेडियो बढ़ना लग गया। 85 साल बड़े स्टार पकड़े ऑनलाइन लग गया अनु रेडियो होना
0: जी।
2: कहती हैं तुम्हारा भी योगदान आ गया, कम्युनिटी रेडियो खोलिया था लोकल लैंग्वेज जो भी बढ़ावा मिले वो
0: जी।
2: ये जाके रेडियो दिवस पर मैं बोलना था
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी और धन्यवाद है
2: जी।
0: और तो है
2: जी, हाँ जी, आज
0: जी कुंदन की तो ना पसंद कर ले
2: जी। तो जी तो है सुनील राणा की वर्जी इंद्र कोई बढ़िया ना पुराना
0: पुराना गीत होना।
2: हाँ जी,
0: चलिए ठीक है जी, जरूर होना लेते सु। धन्यवाद जी। दर्शकों भैया कार्यक्रम जो हागो बढ़ंदन और इस प्रकार होगी जानकारी रहा सिलसिला के असो तुस होगे चले रहना हर श्रोतों बने रहा जुड़े रहा रेडी गुंजन रेसी गूंज सोगे। फिलहाल है लेके चल रहे तू सभी जो श्रोतों इंदी बहुत ही प्यारी और नन्नी दे आवाज जो गुरुकुल स्कूल में पढ़ दें त्यारी मासी रहेगी। कंचन कपूर।

শত এফএম ব্যান্ড 91.2 MHz পর রেডি গুঞ্জন ধর্মশালা তো হ্যাঁ সবই টিউন করো আর এই কার্যক্রম হিন্দি আপনি গপ্পা কেন সো বিলকুল লাইভ চল রে তুন্দে রেডিও सेट माँ वेड़ी गुंजन धर्मशाला मंच। चलिए कार्यक्रम जो थोड़ा करे और आगू बढ़ते हैं श्रोतों और कुछ एक और इंदे श्रोता सोगे जुड़ू कर दें तुसोगे भी के सो जुड़न दे 7018809 पर तो है कॉल कर सकते हैं नंबर आक मौके फिर आऊँ शेयर कर लूँ हाँ 7018809 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत होनी सकते हैं। बहरहाल तो श्रोता चल दें थोड़े घरे और हगूँ और बिल्कुल आज 23 जुलाई है श्रोता और आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भी हा नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे जतियों अंग्रेजी में बनते हैं श्रोताओं त 23 जुलाई 1927 जो ही के सो बॉम्बे में पहले बॉम्बे बनते थी अब मुंबई बुछूरा स्टेशन था उनके सो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC वे तहत देश का पहला आधिकारिक वीडियो प्रसारण किया सो शुरू भुआ थू शो तो इसे ऐतिहासिक शुरुआत रे बाद 8 जून 1936 जो के सो इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस व ना किया सो बदले करी किया सो ऑल इंडिया AIR करी था ऑल इंडिया रेडियो किया सो करी दिता शो तो है ना जत्थों बाद आकाशवाणी वे नाथों सब जानते हैं है ना कि आकाशवाणी आ और अजरे दिन फिलहाल अजरे दिन इन दे श्रोता सोगे कनेक्टेड हैं बिल्कुल श्रोता जो कनेक्ट कर दें श्रोता और अजरा दिन बड़ा ही असु सब भी वास्ते कि असो स्पेशल भी

0: इतना योगदान जो भी याद दुआंदा हा और सोगे सोगे श्रोतो बिल्कुल सूचना और मनोरंजन रा रेडियो ए टूल जो इता हाय हा जति थो असु अपनी बोली में खास कर अपनी गद्दी बोली में कि असो सूचना मोल दे हा अपनी गद्दी बोली में कि असो इंदा मनोरंजन भी बुंदा हा गीत संगीत रे माध्यम थो। बहरहाल इंदा अगले श्रोता असु के कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। नमस्कार
1: सचिन जी, क्या हाल है?
0: बहुत बढ़िया जी। तो है बल्ला तुंदा क्या हाल न?
1: बढ़िया जी, बढ़िया।
0: अच्छा जी, कौन बल्लू देन और कड़ी था बल्लू देन?
1: और सोतम बल्लू करना सिद्धवाड़ी रक्कड़ रोड।
0: अच्छा, सिद्धवाड़ी रक्कड़ रोड थो ता सिद्धवाड़ी बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट बछूरा पुरुषोत्तम जी दो एक दिन पहले है ना जी?
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: होने थे तो है भी गप?
1: हाँ गप होने हैं। मोटरसाइकिल आ रहा था बछूरा।
0: जी जी जी बिल्कुल।
1: अक एरा भी बछूरा ना रानी ताला री किनारे मुंडा मरे को आए अक एक्सीडेंट बछूरा हो।
0: हाँ जी।

0: ना लगता, और जिंदगी ने भी कोई भरोसा नहीं किया। अब जो और एक्सीडेंट था, ये चीज़ ऐसी कि इंसान की सो घर था खरा खुश या खरा निकलता है ना, लेकिन रास्ते में क्या पूछेगा। अच्छा वो खासकर जो दोपहिया वाहन वाले बंदे थे वो ज़्यादा खतरा बंदा है ना, जो कि तैयारी सेफ्टी
1: हाँ जी
0: कुछ
1: हाँ
0: ना बंदे
1: जी
0: है। गड्डी गुड्डी आ ले तो चलो, मतलब बड़ा रफ चल रहे बनता है, कुछ बंदा नहीं था, नॉर्मल था गड्डी आ के सो बचे गंदे, हल्की फुल्की चोट आई ने
1: हाँ जी हाँ जी मदद
0: जी। चलिए जी
1: अरे बार टेलीफोन करूंगा मैं लोग गप सप तो मारे हलने वाला
0: चलिए जी, मेरा सौभाग्य कि इंदे सियाने किए ना सासुओं की जुड़ते हैं और इस कार्यक्रम सो की जुड़ते हैं, तो ये मेरा सौभाग्य जी। और तुसु तो बहुत सारी चीज़ आसुओ भी सीखने जो मुड़ीगन दिन जी।
1: जी
0: मिलू तो
1: उम्र
0: ना मिलू तो सुधाऊँ बहुत सारी चीज़ आसुओ भी सीखने जो कि ना सो मुड़ीगन दिन
1: हाँ जी हाँ जी चलो
0: जी।
1: चलो जिंदगी का एक्सपीरियंस भी बनता ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल जनाब, बिल्कुल बंदा
1: हाँ तो 79 साल उम्र चल रही है तो जिंदगी का एक्सपीरियंस तो आए।
0: और कमाल है, बहुत एक्सपीरियंस है तो सुले
1: हाँ जी
0: जी। तो जनाब कुंदन की तो होना पसंद कर ले।
1: तू है मदद डेढ़ बाद रलिया खेरा मेला होना ही दे तू है
0: रड़िया वो खेरा मेला, खेर फिलहाल तो मिंजर मिंजर रा मेला लगना है वे मिंजरा रा।
1: हाँ तो यार ऐसे कर दे ना मिंजो बे
0: हाँ जी
1: मेले यार ऐसे कर दे ना मेले रे। हाँ
0: अच्छा, क्या
1: जी हाँ जी
0: बात है, तो घुचूरे थे ये तो है रलिया रे मेले जो।
1: आओ तो कभी गो नहीं है अपना लोग गाना ही होने लगते
0: चलिए गाने रे गाने रे उती होगी कि एहसास होगी कि असो मेले में पुज गाना सो।
1: सो है ना डॉक्टर
0: बिल्कुल जनाब, ठीक है पुरुषोत्तम जी, धन्यवाद, इजाजत दिया, तुसु तुंदा जो गीत है सो जरूर ब्रॉडकास्ट कर ले है।
1: ठीक है जी शुक्रिया
0: शुक्रिया जनाब। चलिए इंदे अगले श्रोता सूगी कनेक्टेड हिंद श्रोताओं तो सब बन रहे ने समय आरजे सचिन कपूर सो गया, और इंदी अपनी गप्पा जो बिल्कुल लाइव हुनु कर देन रेडियो गुंजन धर्मशाला मंच और फेसबुक रे माध्यम तो भी है कि ऐसा कुछ एक क्लिप्स रख देना आजकल। नमस्ते जी,
1: नमस्कार
0: नमस्कार जी, नमस्कार, दोनों हाथ जोड़ कर नमस्ते या
1: यार
0: आवाज
1: अच्छा
0: आवाज कटियो कर दे जी, आवाज थोड़ी घर कटियो कर दे या
1: हेलो
0: जी।
1: हेलो
0: हेलो, हाँ जी,
1: खिड़क जान
0: खिड़कू तो पता लग गो, पर
1: की संचान
0: खिड़कू तो किशन चांद जी बोलूं देन
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। किशन चांद जी ठीक ठाक ने,
1: बढ़िया मदद देना बार करो कॉल मिलो कॉल कर लेंगे
0: बड़े दिना बाद महीने बाद ही बल्ला
1: महीने ना 3 4 महीने बाद हाँ जी
0: हाँ बड़े महीने बाद ताई तो मैं बोलूँ बड़े महीने बाद ही बल्ला
1: जी
0: जी।
1: और ठीक ठाक है
0: बढ़िया जी, तुम्हारा आशीर्वाद है तो बल्ला ठीक ठाक ने।
1: बढ़िया बढ़िया चलो सीधे बात तो उपराला रे मुझे जाना
0: चलो सियाने रे भी जरूरी है जनाब, आऊँ तो हमेशा बोलूँ
1: जी गाना
0: जी। किशन चंद जी कुंडने गीत होना पसंद कर ले।
1: होना जी नील राणे गोला को मेला दे थले थले जान दे अबेरा या
0: जी,
1: जी तस गाने होना जी धन्यवाद
0: चलिए ठीक है जी, जरूर होना
1: जी
0: ले,
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद जी
1: जी धन्यवाद
0: जी। चलिए जो तो समय रा थोड़ा करे अभाव किए सो असूले बुचिगो हक, जो कि समय घट बचो और फरमाइश के सो थोड़ी करी ज़्यादा हिंता। चलिए जी, सुनील राणे रा कोई पुराने दे गीत किए सो होना तो था सो गीत किए सो इंदर नरवाना थो बन रही थी ये श्रोता तीन जो होने दिन बनी रही आज सचिन कपूर सो की गूंज अपने बन रही।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सब ये ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गैन सो चल रही है। तो चलिए जी कौन कौन रड़िया रे मेले जो कुछ हो रहा जो कुछ हो रहे हैं तीनों ता पता बुना कि कदे कदे बंदा है तो कुछ हो रहे हैं और जिन्हें फरमाइश करे थे परसोत्तम जी जो कि रकड़सित बाड़ी थी है सो भी ना कुछ हो रहे लेकिन इस गीता रे माध्यम तो यह एहसास कर लेंदेन तस मेले रहा एहसास कर दें और दो दिन फ्रैटी लेंदेन

শোধু এফ এম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ পর রেডি গুঞ্জন ধর্মশালা তো হ্যাঁ সবই টিউন কর রো আর সচিন কাপুর সো গিন্দি আপনি গপ্পা হুন কর দে রিয়ে শোধু আবে ইজাজত দেয়া কজো কি সময় বুঝ গো তুস সব ভি থো ইজাজত লেনে রা আর গন্দে গন্দে এক আখরি ফরমাইশ আসো ফরমাইশ পুরি করনি আসো फिलहाल लेनो इजाजत मुलदे छिए थो आठ फिरी गुड इवनिंग धर्मशाला में और यह योजना रे बारे विस्तार पूर्वक तुसु दस न हिंस हो बरहाल हंसते रहे मुस्कुरेंदे रहे माँ बाप री सेवा जरूर करा शो तो सियाने जो खुश जरूर रखा और तो है बहुत लकी न अगर तुंदे घरे सियाने हिन तुंदे माँ बुढ़े हिन तो है बहुत लकी न और इस समय जो किया सो गुजरना मत दिया इस समय जो अपने माँ बुढ़े होगी कि सो जरूर व्यतीत करा शो तो उनको जो कि धीरे धीरे सो आशीर्वाद देने वाले हाथ के न तिन्या हथ तमा कदी ध्यान न गे रहे शो तो कि सो हथ सियाने बुचे चले ना पे सो हथ के न सो अब हथरी चमड़ी किया सो छटना लगी पिया सो हर एक पल अपने माँ बूढ़े हो गए किया सो अच्छे तरीके हो गए व्यतीत कराइया शब्द था सचिन कपूर लेनो इजाजत नमस्ते धर्मशाला।

नमस्कार दोस्तों, 91.5 ओमेगा हर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। राज्यपाल कविंद्र गुप्त, राष्ट्रीय लक्ष्य से पहले टीबी मुक्त होगा हिमाचल। एचपीयू के विद्यार्थियों और शिक्षकों को एक्सपोजर विजिट पर भेजेंगे, शुरू होंगे नए कोर्सेज। खेल बनेगा हथियार, हर पंचायत में पहुंचेगा चिट्टा मुक्त अभियान। स्वच्छ और हरित विद्यालय रेटिंग में प्रदेश के 11 स्कूलों को राष्ट्रीय सम्मान। अब समाचार विस्तार से।

राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लोक भवन में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत चल रहे टीबी मुक्त भारत अभियान 2.0 की उच्च स्तरीय समीक्षा की। उन्होंने राज्य की नवाचार पहलों और जन केंद्रित दृष्टिकोण की सराहना करते हुए विश्वास जताया कि हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय लक्ष्य से पहले ही टीबी मुक्त राज्य बनने का गौरव हासिल कर लेगा। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने स्पष्ट किया कि टीबी उन्मूलन सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक सामाजिक जन आंदोलन है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और स्वास्थ्य विभाग को कड़े निर्देश दिए कि आयुष्मान आरोग्य शिविरों में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ाई जाए, साथ ही उच्च जोखिम वाले समूहों को समय पर छाती के एक्सरे व निःशुल्क जाँच के लिए प्रेरित करने के लिए जागरूकता अभियानों को और अधिक तेज किया जाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कोर्स शुरू करने के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को 5 करोड़ रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की। उनका कहना है कि भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप HPU में नए युग के कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों व शिक्षकों को भी एक्सपोजर विजिट पर भेजा जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि एक्सपोजर विजिट पर भेजने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से व्यवस्था की जाएगी और इसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। उनका कहना है कि आने वाले समय में HPU को ग्रीन हाइड्रोजन के लिए नोडल एजेंसी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त भारत मुक्त अभियान की शुरुआत की। ये राज्यव्यापी पहल खेलों और युवा भागीदारी के माध्यम से नशे की समस्या से निपटने के उद्देश्य से शुरू की गई। इसका उद्देश्य चिट्टा जैसे मादक पदार्थों के खिलाफ एक सशक्त सामाजिक जन आंदोलन खड़ा करना है। अभियान के तहत 8 नगर निगमों, 29 नगर परिषदों तथा 39 नगर पंचायतों में भी जागरूकता कार्यक्रम चलेंगे। विशेष रूप से नशे से सर्वाधिक प्रभावित 235 पंचायतों में गहन अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं, जागरूकता कार्यक्रम और सामुदायिक संपर्क अभियान आयोजित किए जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने की दिशा में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट कांगड़ा धर्मशाला में आज DLED प्रशिक्षुओं एवं अध्यापकों की सहभागिता से व्यापक पौधारोपण अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम की विशेषता ये रही कि प्रत्येक 2 DLED प्रशिक्षुओं ने एक अध्यापक के साथ मिलकर एक पौधा रोपित किया। इससे प्रशिक्षुओं में पर्यावरण संरक्षण के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने का प्रभावी प्रयास किया गया। मुख्य अतिथि श्री भाग सिंह ने स्वयं डाइट परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार पर देवदार का पौधा रोपित कर अभियान का शुभारंभ किया तथा सभी को पौधों के संरक्षण का संकल्प भी दिलाया। इन पौधों से भविष्य में परिसर की हरियाली बढ़ने के साथ साथ जैव विविधता के संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को भी मजबूती मिलेगी। जिला प्रशासन शिमला द्वारा 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय

समारोह का आयोजन वजद भवन शिमला में किया जाएगा। समारोह में कारगिल युद्ध के अमर शहीदों एवं वीर सैनिकों के अदम्य साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धापूर्वक नमन किया जाएगा। समारोह के दौरान कारगिल युद्ध के वीर सैनिकों के अद्वितीय शौर्य एवं राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को नमन किया जाएगा तथा उन्हें सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान कारगिल विजय दिवस पर आधारित एक वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही उपस्थित सभी लोगों को राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने के लिए शपथ भी दिलाई जाएगी। समारोह में कारगिल युद्ध के वीर योद्धा एवं पूर्व सैनिक अपने अनुभव साझा करेंगे, जिससे युवाओं एवं आम नागरिकों को देशभक्ति और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा मिलेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग SHVR 2025-26 में हिमाचल प्रदेश के 11 विद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर पर सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट के लिए चयन हुआ है। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच राष्ट्रीय मेरिट सूची में स्थान बनाना प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। शिक्षा विभाग ने भारतीय शतरंज के इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। देश में पहली बार राज्य स्तरीय बालिका शतरंज खेल छात्रावास CRL स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स जुब्बल की स्थापना से एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस छात्रावास से अब हिमाचल भी शतरंज के नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी तैयार करेगा। इसके लिए टीम का चयन 21 जुलाई को हुआ है। अभी टीम में कितने खिलाड़ी चुनेंगे और टीम में किस किस जिले से कितने खिलाड़ी चयनित हुए हैं, इसकी भी जल्द ही घोषणा की जाएगी। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: तुमसे अच्छा कौन है।
1: आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

नमस्कार श्रोतो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। मेरा नाम सचिन कपूर है, मैं धर्मशाला रेडियो गुंजन का ये बेहतरीन सा कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी के समक्ष लेकर हाजिर हुआ हूँ, आप सभी के बीच में लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस कार्यक्रम में आप सभी बाखूबी जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक जानकारियां पहुंचाते हैं, स्थानीय जानकारियां पहुंचाते हैं, धर्मशाला से जुड़ी जानकारियां पहुंचाते हैं और साथ ही साथ गीत संगीत से भी आपका दिल जो है वो कहीं ना कहीं खुश करने की कोशिश करते हैं श्रोतो, है ना। और चलिए तो फिलहाल धर्मशाला का मौसम जान लेते हैं। आप सभी ने ट्यून किया है एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला और मैं सचिन कपूर हूँ। तो इस समय की अगर हम बात करें श्रोताओं, यानी कि बिल्कुल बिल्कुल इस समय धर्मशाला में जो मौसम है वो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है श्रोताओं, और ह्यूमिडिटी की बात की जाए यानी कि नमी की बात की जाए तो 70% नमी जो है वो बनी हुई है इस समय धर्मशाला में श्रोताओं। यह मौसम की जानकारी जो हमने आप तक पहुंचाई, आइए लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को बिल्कुल इस प्यारे से गीत की ओर।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम इस समय चल रहा है और मैं सचिन कपूर इस समय कार्यक्रम को होस्ट कर रहा हूँ। चलिए पहले कुछ एक जानकारियाँ आपके साथ जो है वो साझा कर लेते हैं श्रोतों। जैसे कि हम सभी बखूबी जानते हैं कि वो में जो है वो बादल फटने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और काफ़ी एरिया जो है वो प्रभावित हुआ है श्रोतों, और प्रभावित क्षेत्र का दौरा जो है वो SDM और DC दोनों ने किया है और वहाँ पर जाकर दौरा कर कर जो है वो संभाली है व्यवस्था। जी बिल्कुल, घरों के मालिकों मालिक राहत शिविर में बने और श्रोतों बिल्कुल सभी को खाना खाने पीने की सुविधा जो है वो मिल रही है। इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को श्रोताओं, शाहपुर के विधायक एवं उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र से बाहर होने के बावजूद लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से प्रभावित परिवारों से बातचीत कर उनका दुख साझा किया है और उन्हें भरोसा दिलाया है कि कठिन समय में कोई भी परिवार अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार हर प्रभावित व्यक्ति के साथ मजबूती से खड़ी है और राहत कार्यों में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसी बीच प्रभावित लोगों ने रो रो कर अपनी दास्तां जो है वो बयां की शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया जी के साथ। तो चलिए श्रोताओं, इसी प्रकार से जो है वो जानकारियों का सिलसिला खुलता जाएगा, जानकारियों का पिटारा जो है वो इसी प्रकार खुलेगा। श्रोताओं आइए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा रेडियो गुंजन की गूंज के इसी गूंज के साथ, क्योंकि बारिश हो रही है इस समय भी हल्की हल्की बाहर और बिल्कुल श्रोतों इस बारिश के मौसम में ये वाला गीत तो ज़रूर बनता है कि चलते रे इश्क में पड़ जाओ।

क्या बात है श्रोता, बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने वीडियो सेट पर सुना वेड़ी गुंजन धर्मशाला में। गीत के बोल थे चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं, ये मेरा ये पर्सनली बहुत अच्छा और प्यारा फेवरेट गीत आप कह सकते हैं कि एक बार फिर से बर्बाद हो जाते हैं, एक बार फिर से तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। ये इश्क चीज़ ही ऐसी है ना श्रोता, जितनी बार पड़े उतनी बार कम। फिलहाल तो हम ही आपको ये बताएंगे कि गदर 2 मूवी से लिया गया ये गीत था, विशाल मिश्रा और नीति मोहन की आवाज़ में प्यारा सा गीत आप सभी ने वीडियो सेट पर सुना वेड़ी गुंजन धर्मशाला में श्रोतों। तो जैसे कि आप सभी बाखूबी जानते होंगे कि आज है कौन सा दिवस, अंग्रेजी में कहें तो ब्रॉडकास्ट, हाँ जी हाँ जी बताइए ना, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे यानी कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है आज। हम और आप कैसे मिल पा रहे हैं, इसी की बदौलत तो मिल पा रहे हैं श्रोतो। और आज वही दिन है 23 जुलाई, इस दिन को भला कौन भूल सकता है, खासकर वो इंसान तो बिल्कुल नहीं जो रेडियो से जुड़ा हो। जी बिल्कुल, चलिए जी, तो इस दिन के बारे में थोड़ी सी खास बातें जो है वो आपसे कर लेते हैं। हम फेसबुक के माध्यम से भी लाइव आ चुके हैं श्रोतों, आप सभी ने ट्यून किया इस समय FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला, और मैं सचिन कपूर हूँ आप सभी के वीडियो सेट पर हाजिर। अन्य जो हमारी सरकार की स्कीमें हैं वो भी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, उस एक विषय को हम ज़रूर आप तक साझा करेंगे। लेकिन आज 23 जुलाई है यानी कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भी आज, जिसको अंग्रेजी में नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कहा जाता है। जी बिल्कुल, आज के दिन मना रहे हैं हम लोग नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। बताते चलते हैं श्रोतों, 23 जुलाई 1927 को जो है वो एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी कि IBC ने, पहले बॉम्बे बोलते थे, अब मुंबई हो चुका है ये स्टेशन, बॉम्बे स्टेशन से देश का पहला आधिकारिक रेडियो प्रसारण जो है वो शुरू किया था श्रोतों। 8 जून 1936 को इस सेवा का नाम बदलकर जो है वो भारतीय रेडियो यानी कि अखिल भारतीय रेडियो यानी कि अंग्रेजी में कहूँ तो AIR श्रोतों, नहीं माफ़ करें AI यानी कि इंडिया रेडियो कर दिया था आकाशवाणी। फिर मैं आपको बताता चलता हूँ श्रोतों, 1956 में जो है वो राष्ट्रीय, जी बिल्कुल, इसको आकाशवाणी का नाम जो है वो 1956 में जो है वो दिया गया था श्रोतों। बिल्कुल आकाशवाणी का मूल मंत्र हम सभी जानते हैं श्रोताओं, ये दिन देश के विकास, सूचना का प्रसार, शिक्षा और संस्कृति, एकता में रेडियो और प्रसारण माध्यमों की ऐतिहासिक भूमिका को याद करने के लिए मनाया जाता है श्रोताओं। तो आप सभी भी रेडियो से ज़रूर जुड़ते हैं, हम बाखूबी जानते हैं, हमारे बहुत से श्रोता हमें कॉल करते हैं, बहुत से हमारे श्रोता हैं जो हमें कहीं मिलते हैं, है ना, जो हमारे रेडियो के साथ जो हैं वो बने हुए हैं। तो आप सभी को भी इस दिन की जो है वो बहुत बहुत शुभकामनाएं। 23 जुलाई भूलना नहीं, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, अंग्रेजी में कहें तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। फिलहाल आप सभी को हम लेके चलेंगे श्रोताओं इस प्यारे से गीत की ओर, बने रहेगा, जुड़े रहेगा वेड़ी।

शोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये वेड़ी गुंजन धर्मशाला है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी, जो कि सचिन कपूर। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है श्रोताओं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। आइए तो श्रोताओं, अब आपको लेके चलते हैं कुछ एक और जानकारियों की और आप सभी को रूबरू करवाते हैं। वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में सड़क दुर्घटनाओं में जो है वो 6.48% की कमी आने के बावजूद हिमाचल प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने तथा दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से एक और महत्वपूर्ण कदम जो है श्रोताओं वो उठाया है। राज्य सरकार ने लोक निर्माण विभाग के अधीन आने वाली सड़कों के लिए सड़क सुरक्षा ऑडिट नीति लागू करने को मंजूरी प्रदान की है, ताकि सड़क सुरक्षा को राज्य में सड़कों की योजना, डिज़ाइन, निर्माण, संचालन और रख रखाव का अभिन्न हिस्सा जो है वो बनाया जा सके। श्रोताओं, विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्य में दुर्गम तीखे मोड़ और प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियां अतिरिक्त जोखिम उत्पन्न करती हैं, जैसे कि हम सभी बाखूबी जानते हैं इस चीज़ को। सड़क सुरक्षा एक गंभीर सार्वजनिक चिंता का विषय बन चुकी है श्रोताओं। सड़क सुरक्षा संबंधी कर्मियों की व्यवस्थित पहचान और उनके प्रभावी समाधान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने भारतीय सड़क कांग्रेस के दिशा निर्देश एवं सिफारिशों के अनुरूप एक व्यापक सड़क सुरक्षा ऑडिट ढांचा अपनाया है। इस नीति का उद्देश्य सड़कों में जो है वो सुधार लाना है, दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना है तथा सभी सड़कों को जो है वो एक बेहतरीन डिज़ाइन देना है और अच्छे से मतलब सड़क नेटवर्क को जो है वो विकसित करना है, साधारण भाषा में मैं कहूँ श्रोताओं। तो चलिए, कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं इस समय गुड इवनिंग धर्मशाला आरजे सचिन कपूर के साथ आपके अपने रेडियो सेट पर, रेडियो गुंजन धर्मशाला में 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। जानकारियों का सिलसिला पिटारा यूं ही खुलता रहेगा। फिलहाल हम आपको गवाही देंगे किस बात की, इस बात की।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये वेडी गुंजन धर्मशाला है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेडी जो कि सचिन कपूर। बहुत प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना वीडियो सेट पर, श्रोतो गवाह हैं, चांद तारे गवाह हैं। जी बिल्कुल जी, चांद तारे गवाह हैं, दामिनी मूवी से लिया गया ये गीत है श्रोतो, और कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना अपने वीडियो सेट पर वेडी गुंजन धर्मशाला में। आइए तो श्रोतो इसी के साथ अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। पिटारा जानकारियों का जो है श्रोतो वो यूं ही खुलता जाएगा वीडियो सेट पर, और फेसबुक के माध्यम से भी हम इस पिटारे को जो है, खबर के पिटारे को जो है वो साझा कर रहे हैं। तो प्रदेश में मॉनसून 2026 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान का अब जो है श्रोताओं वो पल पल का रिकॉर्ड ऑनलाइन रखा जाएगा। जी बिल्कुल, राज्य सरकार ने सभी विभागों को, सभी डिपार्टमेंट्स को निर्देश दिए हैं कि आपदा से संबंधित हर प्रकार के नुकसान की जानकारी इस समय पर हिमाचल प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल पर जो है वो दर्ज करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में मुख्य सचिव के निर्देश के बाद जिला कांगड़ा प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। जिला दंड अधिकारी एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA कांगड़ा की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि मॉनसून 2026 के दौरान सड़कों, पुलों, पेयजल योजनाओं, बिजली व्यवस्था, कृषि बागवानी, सरकारी भवनों तथा अन्य सार्वजनिक एवं

निजी संपत्तियों को हुए नुकसान का पूरा और सत्यापित ब्यौरा, पूरा ब्यौरा जो है वो सत्य ब्यौरा जो है वो समय पर पोर्टल पर अपलोड किया जाए। श्रोतम जी बिल्कुल, और ये जानकारी है। और श्रोतों कांगड़ा में बरसात की तबाही का पल पल का रिकॉर्ड अब जो है वो ऑनलाइन चढ़ेगा। श्रोतों जी बिल्कुल, श्रोतों पोर्टल पर तुरंत दर्ज करनी होगी मानसून के नुकसान की जानकारी, देरी होने पर प्रभावित हो सकती है राहत राशि, और स्कूलों को भी जो है वो भेजने होंगे नुकसान के विवरण। श्रोतों जी बिल्कुल, लोक निर्माण विभाग, बिजली बोर्ड और कृषि एवं बागवानी विभाग, शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन वन विभाग, इन सभी को जो है वो रिपोर्ट्स भेजनी होगी। अन्य हो सकता है मुझसे छूट गए हों, लेकिन इन इनकी हाइलाइट्स पे ये विभाग हैं, ये डिपार्टमेंट है, इनको रिपोर्ट्स जो है वो पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य है। आप सभी बने हुए हैं इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं। तो चलिए जी, अब उस रब को याद कर लेते हैं जिसमें आप सभी बसते हैं। जी बिल्कुल श्रोताओं, आपकी लाइफ में भी वो शख्स जरूर होगा जिसे आप रब मानते हैं, मानते हैं ना, तू ही रब, तू ही सब कुछ। चलिए तो उन्हीं की याद में अगर वो पास हैं तो हाथ थाम के बैठ जाइए, और अगर दूर हैं तो आंख बंद करके इस गीत को जो है वो

तो श्रोताओं, आप सभी एंजॉय कर रहे हैं समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और जानकारियों का पिटारा और गीत संगीत का पिटारा यूं ही चलता रहेगा आप सभी के रेडियो सेट पर रेडी गुंजन धर्मशाला में 91.2

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे रेडियो जॉकी सचिन कपूर। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है श्रोतों कार्यक्रम में गुड इवनिंग धर्मशाला में। तो चलिए जी, गुड इवनिंग धर्मशाला में श्रोतों, आई होप कि आप सभी जानकारियों के साथ, बहुत सारी जानकारियों के साथ इवन रूबरू हो रहे हैं और साथ ही साथ गीत संगीत। तो देखिए, जीवन का ये बहुत ही अच्छा माध्यम है गीत संगीत। इस माध्यम के जरिए जो है वो हम अपनी खुशी भी बयां कर लेते हैं, कैसे नाचकर, और अपना गम भी कैसे आंसू बहाकर जब हम सैड सॉन्ग सुनते हैं। तो फिलहाल हम आपको सैड नहीं करेंगे, हम आपको जानकारियों के साथ रूबरू करेंगे और साथ ही साथ श्रोताओं गीत संगीत के साथ और प्यारे प्यारे गीतों के साथ। श्रोताओं आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बिल्कुल अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। श्रोताओं, सेना भर्ती कार्यालय पालमपुर ने कांगड़ा और चंबा जिला के अग्निवीर भर्ती वर्ष 2026 के अभ्यर्थियों के लिए ग्राउंड टेस्ट के प्रवेश पत्र जो है वो जारी कर दिए हैं। श्रोताओं आप सभी को बताते चलते हैं कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर तकनीकी, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं उत्तीर्ण और अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए जो है वो भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट से अपने प्रवेश पत्र आप डाउनलोड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ग्राउंड टेस्ट का आयोजन 1 से 15 अगस्त तक धर्मशाला स्थित युवा सेवाएं एवं खेल विभाग कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के सिंथेटिक ट्रैक पर किया जाएगा। श्रोतों, सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में अंकित तिथि तथा समय के अनुसार ही परीक्षा स्थल पर पहुंचना होगा। सेना भर्ती कार्यालय पालमपुर के भर्ती निर्देशक कर्नल विशाल शाह ने अभ्यर्थियों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने साथ मूल दस्तावेज जो है वो ज़रूर लाएं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रवेश पत्र है ना, पहचान पत्र, इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़रूर साथ लेके जाएं। यदि किसी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कोई समस्या आती है तो वह सेना भर्ती कार्यालय पालमपुर से ईमेल अथवा दूरभाष के माध्यम से जो है वो संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि अग्निवीर बिल्कुल उन्होंने ये भी बताया है कि अगर आपको लगता है किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप ज़रूर जो है वो पालमपुर से कार्यालय, सेना भर्ती कार्यालय पालमपुर से ईमेल के जरिए जुड़ सकते हैं। और इवन कि इन्होंने ये भी बताया है श्रोताओं कि अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थियों को सेना भर्ती कार्यालय पालमपुर के आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल से जुड़े रहने की जो है वो सलाह भी दी है श्रोताओं। तो बिल्कुल 1 से 15 अगस्त तक धर्मशाला स्थित युवा सेवा एवं खेल विभाग कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के सिंथेटिक ट्रैक पर जो है वो किया जाएगा। तो आप सभी भर्ती होगी तो आप सभी ज़रूर, क्योंकि फौज आर्मी है एक जो हर किसी को जो बॉर्डर के पास है उनके लिए तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है श्रोतों, हर टाइम अपनी जान हथेली पर लेकर वो घूमते हैं। लेकिन हम जैसे हम सभी अंदर बैठे हुए हैं बॉर्डर के अंदर अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो हम सभी सिर्फ़ और सिर्फ आर्मी की ही बदौलत जो है श्रोताओं वो अपने घरों में हम सुकून के साथ रहते हैं, अपने घरों में हम आराम से रहते हैं। तो ज़रूर डट के मेहनत कीजिएगा, ग्राउंड जो है वो काफ़ी टफ़ रहता है आर्मी का, तो ज़रूर ग्राउंड क्लियर करें और इसके बाद एग्ज़ाम क्लियर करें। बहरहाल आप सभी बने हुए हैं इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ और रेडियो गुंजन की वही गूंज के साथ जो गूंज आप सभी को पसंद है। जो गूंज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जो गूंज आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होगी श्रोतों, है ना जी। तो चलिए, कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला जो है श्रोतों वो यूं ही चलता रहेगा, पिटारा जो है जानकारियों का वो यूं ही खुलता रहेगा। आइए लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर, बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ रेडियो गुंजन गूंज के साथ।
देखिए आप सभी भी कभी ना कभी जो है वो दीवाने तो ज़रूर हुए होंगे श्रोताओं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये आशिकी, ये उस समय की आशिकी होती है जब हम वो कॉलेज का दौर याद करते हैं, या फिर वो कॉलेज का वो कैंटीन याद करते हैं, या कॉलेज का वो ग्राउंड याद करते हैं, उस समय की आशिकी होती है, उस समय हम दीवाने हो जाते हैं। तो आइए आज अभी वेडी गुंजन के माध्यम से आप सभी को लेके चलते हैं उस ग्राउंड की ओर, उस कैंटीन की ओर, उन यादों की ओर, जहां आप भी दीवाने हुए थे कभी ना कभी, कहीं ना कहीं।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला दीवाना कर गए। याद आया वो महसूस तो किया होगा आप सभी ने श्रोतों, क्योंकि ये गीत के बोल वाकई में बहुत प्यारे थे। अगर आपने उस फील से महसूस किया होगा तो ज़रूर आप भी दीवाने जो है जब हुए होंगे तब की याद में हम आपको लेकर जाने की कोशिश जो है वो कर रहे थे। होप सो आप गए भी होंगे, क्योंकि दीवाना तो हर कोई होता है और ज़रूर होता है, कभी ना कभी तो ज़रूर होता है। दीवानगी आपकी आपकी इंटेलिजेंसी की भी हो सकती है, दीवानगी आपकी आपकी पढ़ाई को लेकर भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आशिकी ही करनी है ना। दीवानगी बहुत सारी चीज़ों

को लेकर हो सकती है, दीवानगी अपने काम को लेकर जो है वो हो सकती है। श्रोताओं, फिलहाल हमको दीवाने करके तुलसी कुमार और सोनू निगम की आवाज़ में प्यारा सा गीत आपने सुना। आइए जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली कुछ जानकारियों के साथ आप सभी को रूबरू करवाते हैं। प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता स्वर्गीय जीएस बाली जी की जयंती के उपलक्ष में जो है वो चौथा विशाल रोजगार मेले का आयोजन 25 एवं 26 जुलाई 2026 को गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नगरोटा बगवा में किया जा रहा है। श्रोतों, ये शब्द नगरोटा बगवा के विधायक एवं बाल मेला समिति के संरक्षक आरएस बाली जी ने ओबीसी भवन में जो है वो कही। श्रोतों, ओबीसी भवन में आयोजित कार्यकर्ताओं की बैठक में उन्होंने ये बातचीत कही। श्रोता, उन्होंने बताया कि इस रोजगार मेले का उद्देश्य प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को जो है वो रोजगार उपलब्ध करवाना तथा उन्हें देश की अच्छी कंपनियों के साथ सीधे जोड़ना है, बेहतरीन कंपनियों के साथ सीधे जोड़ना है। उन्होंने बताया कि रोजगार मेले में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी 25 एवं 26 जुलाई को जो है वो अपने प्रमाण पत्र के साथ अपना पूरा बायोडाटा लेकर जो है आधार कार्ड तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नगरोटा बगवा पहुँच कर विभिन्न कंपनियों के लिए जो है वो तैयार हो जाएँ और विभिन्न कंपनियों में इंटरव्यू आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में भाग लेने के लिए आप जरूर तैयार हो जाएं। श्रोताओं, जिला रोजगार अधिकारी अधिकारी अक्षय कुमार और बिल्कुल अमित सूद ने बताया कि इस मेले में अभी तक 27 कंपनियां युवाओं के चयन के लिए जो है युवाओं को चुनने के लिए जो है वो पंजीकरण करवा चुकी हैं, जो 3500 युवाओं का चयन करेगी। उन्होंने बताया कि युवाओं को 14,000 से 50,000 तक वेतन जो है वो मिलेगा। इनकी स्टार्टिंग 14,000 और 50,000 तक वेतन मिलेगा। श्रोताओं, तो चलिए जी कार्यक्रम में जानकारियां यूं ही चलती रहेंगी। आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ, इस नाचीज के साथ जानकारियों का पिटारा यूं ही चलता रहेगा। श्रोताओं, बने रहेगा, जुड़े रहेगा आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, गूंज अपने बन की और गूंज जितने भी प्यारे प्यारे श्रोता हमारे साथ बने हैं, जुड़े हैं।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेरी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूँ आपके साथ बिल्कुल साथ और आरजे सचिन कपूर कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं बिल्कुल लाइव अपने अपने वीडियो सेट पर। आई श्रोतों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। श्रोतों प्रदेश में 6 दिन बारिश का येलो अलर्ट है। 28 जुलाई तक 10 जिलों में जो है वो जमकर अब बरसेगा मेघा। जी बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में मानसून की जो इस समय मैं कहना चाहूँगा दौड़ है वो बिल्कुल जारी है श्रोतों, और जमकर दौड़ जो है वो लग रही है, जमकर बादल बरस रहे हैं श्रोतों। राजधानी शिमला की अगर मैं बात करूं तो शिमला सहित कई इलाकों में जो है वो श्रोतों रुक रुक कर बारिश हो रही है, जो कि आज भी हुई श्रोतों, है ना, बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 28 जुलाई तक जो है वो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इस दौरान कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। 23 जुलाई को जो है वो श्रोतों किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर शेष सभी 10 जिलों ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जो है वो जारी किया है। 24 जुलाई को चंबा कांगड़ा और यानी कि कल चंबा कांगड़ा और सिरमौर में येलो अलर्ट रहेगा श्रोतों। 25 जुलाई को जो है वो 8 जिलों में रहेगा, यानी कि शिमला मंडी कुल्लू कांगड़ा चंबा बिलासपुर हमीरपुर और ऊना में येलो अलर्ट जारी किया गया है श्रोताओं। 26 जुलाई को ऊना कांगड़ा यानी कांगड़ा तो भाई लगातार 28 तक लग रहा है मुझे, 26 जुलाई की बात करूं श्रोताओं तो 26 जुलाई को ऊना कांगड़ा सोलन व सिरमौर में येलो अलर्ट जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 48 घंटों में सबसे अधिक बारिश शिमला ज़िला के मशोबरा में हुई है श्रोताओं, 120 mm दर्ज की गई है। बिलासपुर के शिवी नैना देवी में भी 110 के करीब रही है बारिश, और बताना चाहता हूँ बाकी बिलासपुर शिमला सब जगह हुई है, कुफरी शिमला शहर और सिरमौर के सब जगह हुई है काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश श्रोतों। और हिमाचल में श्रोतों 128 सड़कें थम चुकी हैं, यानी कि 128 सड़कों पर थमे हैं गाड़ियों के पहिए। ये पूरी जानकारी आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। आप सभी बने हों इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ और रेडियो गुंजन की गूंज के साथ एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर, पिटारे यूं ही खुलते रहेंगे।

बिल्कुल शो, तुम परदेसियों से ना हखियाँ मिलाना, परदेसियों को तो है एक दिन जाना, वो जाना भी पड़ता है ना शो। तुम मुझे आज भी वो किस्सा याद है जब हमारे घर ना, मेरे घर योल कैंट में है, तो उस समय अभी तो दीवारें लग चुकी है, और उस समय जो है वो आर्मी एरिया और सिविल में दीवारें नहीं होती थी, है ना, आ जा सकते थे। तो हमारे साथ बहुत सारे हमारे फौजी भाई जो हैं वो बैट बॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, तो उसमें से एक के साथ बहुत लगाव हो गया था मुझे। मुझे आज भी वो किस्सा याद है। और ना वो जो डॉग है उनका, उसके साथ जो है वो काफ़ी लगाव हो गया था शोधों। तो 3 साल हम साथ रहे, साथ खेले, मैं उन्हीं के पास जब संडे होता था तो पूरा दिन वहीं होता था। पाइसर उस डोगी का नाम उन्होंने रखा था, और लैब्रा वो ब्रीड थी श्रोताओं। मुझे उस डॉग से भी बहुत प्यार हो चुका था, और उनसे भी, और फिर तब क्योंकि छोटे भी होते थे ना, पता नहीं होता था कि दूर भी जाना होता है या इस तरह का कुछ ज़िंदगी में मांजरा होता है, झमेला होता है कि हमें रोना भी पड़ता है, हमें दूर भी जाना पड़ता है, बिछड़ना भी पड़ता है। तो उन्होंने मुझे जब बताने के लिए कहा कि अब हम जा रहे हैं, तो मैं सोचूं कि हाँ घर तो जा रहे होंगे, तो आ जाओगे आप, क्योंकि वो पिछले 3 साल से साथ में थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं घर नहीं, हम अब पोस्टिंग जा रहे हैं और हमेशा के लिए जा रहे हैं, अब हम नहीं मिल पाएंगे कभी आपसे। और बस उनका ये बोलना और मेरा रोना, बहुत रोया बहुत रोया। और फिर उन्होंने मुझे समझाया कि इस तरह नहीं रोते हैं, हमारी नौकरी कुछ इस प्रकार की है कि हमें जाना पड़ता है। और तुम्हें कभी भी मेरी, अब तो उनके साथ, क्योंकि उस समय ना मेरे पास फ़ोन था ना ये इंस्टाग्राम था उस समय, है ना, आई थिंक फेसबुक थी उस समय, तो मे बी व्हाट्सएप भी नहीं था, सिंपल मैसेज होते थे। तो उन्होंने मुझे कहा, वो होता ना कुछ एक चीज़ें जो है वो उम्र भर, तय उम्र जो है वो आपके दिमाग में, आपके दिल में जो है वो रह जाती हैं, वो कभी नहीं भूलती हैं, कभी नहीं आप उन चीज़ों को भूल पाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि जब भी मेरी याद आएगी तुम्हें तो ये ज़रूर सुनना कि परदेसियों से ना किया मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना। तो आज भी मैं उन्हें याद करता हूँ, हालांकि वो उस समय ही काफ़ी बड़े थे, तो अब तो वो बुज़ुर्ग हो चुके होंगे, हम काफ़ी छोटे थे, तो अब शायद वो करते ना करते हों, लेकिन मुझे आज याद आई, और आज भी याद आई, और पिछले कल जब ये गीत मैं लिख रहा था अपनी शीट में, क्यू शीट में, तब भी मुझे उनकी याद आई थी। तो मैं कहा ज़रूर आपसे, अगर मुझे ध्यान आया तो ज़रूर आपसे ये बातचीत मैं अपनी जो है वो साझा करूँगा श्रोतों। बहरहाल आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से।

FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम इस समय लाइव आप सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, और जानकारियों का सिलसिला जो है वो यूं ही चलता रहेगा, पिटारा जानकारियों का यूं ही खुलता रहेगा। तो श्रोताओं, हिमाचल में 128 सड़कों पर जो है वो थमे हैं गाड़ियों के पहिए। बिल्कुल, बारिश से जो है वो जनजीवन हमेशा ही अस्त व्यस्त हो रहा है, और पिछले कुछ सालों में जो है वो खासकर हिमाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो रहा है। श्रोताओं, बारिश के चलते राज्य भर में 314 सड़कों पर जो है वो वाहनों की आवाजाही थम गई थी श्रोताओं, जिस पर लोक निर्माण विभाग ने देर शाम तक 186 सड़कों को बहाल कर दिया है, जबकि राज्य में अब 128 सड़कें खोलने के लिए जो है वो शेष रह गई हैं श्रोताओं। इन बंद पड़ी सड़कों को जो है वो मे भी शुक्रवार तक बहाल करने का जो है वो लक्ष्य, यानी कि कल तक बहाल करने का जो है वो लक्ष्य लोक निर्माण विभाग ने रखा है। लोक निर्माण विभाग की रिपोर्ट के तहत अगर मैं बात करूं श्रोताओं, तो राज्य भर में कुल 273 सड़कों के बंद होने की सूचना मिली थी और प्रदेश मुख्यालय को ये सूचना मिली थी श्रोतम। लिहाजा बारिश के कारण प्रदेश में बंद पड़ी सड़कों का आंकड़ा शाम तक 314 पहुंच गया। प्रदेश मुख्यालय में लोक निर्माण विभाग के विभिन्न सर्कल और उपमंडलों से पहुंची रिपोर्टों के तहत प्रदेश में बंद पड़ी सड़कों में से 186 सड़कों को जो है वो बहाल करने का लक्ष्य जो है वो रखा था, और जो कि पूरा हो चुका है श्रोताओं। जिस देर शाम तक लगभग बताना चाहते हैं कि देर शाम तक लगभग पूरा काम जो है वो ख़त्म हो चुका था। अब विभाग ने 73 सड़कों को जो है वो आज की डेट में मैं बताना चाहता हूँ 23 तारीख तक 73 सड़कों को जो है वो और भी खोल दिया है श्रोताओं, जबकि शेष 55 सड़कों को इसके बाद जो है वो खोला जाएगा श्रोताओं। तो आइए जी, आप सभी को मैं बताता हूँ श्रोताओं कि राज्य के शिमला जोन में सबसे अधिक 121, मंडी जोन की बंद पड़ी 90 सड़कों में से जो है वो 40 सड़कें खोल भी दी हैं। कांगड़ा जोन की बात करते हैं, क्योंकि हम सभी कांगड़ा के माफ़ करें, जो कुछ एक लोग हैं वो कांगड़ा के स्थायी निवासी है, तो कांगड़ा जोन में जो है वो लगभग 94 के आसपास का आंकड़ा है, और लोक निर्माण विभाग की रिपोर्ट में जो है वो कहा गया है कि सड़क बहाली के कार्य के लिए जो है वो 532 अलग अलग मशीनें मौके पर जो है वो लगाई गई हैं श्रोताओं। जी बिल्कुल, आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ। इसी के साथ अगली जानकारी भी आप तक पहुंचाते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में आपदा प्रबंधन व्यवस्था और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को आपदा रक्षक मोबाइल ऐप डाउनलोड कर उसका नियमित उपयोग करने के निर्देश जो हैं वो जारी किए हैं। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व की ओर से जो है वो सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग अध्यक्षों, बोर्ड निगमों, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और एमसी नगर परिषद वालों को और नगर पंचायत सहित सभी संबंधित अधिकारियों को जो है वो एक पत्र जारी किया है। ये ऐप राज्य भर में मौसम के पूर्वानुमान, चेतावनी संदेश, आपदा अलर्ट और सुरक्षा संबंधी एडवाइजरी की रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराता है श्रोताओं। तो जानकारियों का पिटारा इसी तरह चलता रहेगा, गीत संगीत यूं ही चलते रहेंगे। आइए श्रोताओं, लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

शत एफ एम मैंने 91.2 MHz पर वेरी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेरी जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का। शत कहते हैं ना, समय के साथ चलना बहुत ज़्यादा आवश्यक है और रेडियो तो हमें यही सिखाता है कि समय की वैल्यू कीजिए। समय बहुत अहम है हम सभी के लिए और समय पर काम होना, समय पर चीज़ों को बदलना, समय पर खुद को बदलना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। श्रोतों बहरहाल अब समय हो चुका है कार्यक्रम में छोटे से अंतराल का और वापस मिलते हैं श्रोतों इस छोटे से अंतराल के बाद। आप सभी यूं ही बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा रेडियो गुंजन की गूंज के साथ। आप सभी यूं ही जुड़े रहिएगा।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: 5 यूट्यूब वीडियो को लाइक करके 5 लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
0: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्युइन है?
0: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मीन्स ये जेन्युइन है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
0: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
2: क्या बात है यार।
3: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
0: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
3: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। कोई भी अजनबी अगर आपको ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करने के लिए कहें तो उसे बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें।

0: लेन देन ना करें और उनकी लालच भरी बातों में तो बिल्कुल ना फंसे। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
1: अब उठो, देश के भाग जगाने हैं आपको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं आपको। अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है, अब ठान के मुट स्वच्छता की ज्योत जागी रहे, स्वच्छता की ज्योत जागी रहे।

0: एचआईवी कभी न दूं। अगर आप मां बनने वाली हैं, तो एचआईवी टेस्ट जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में सलाह और एचआईवी टेस्ट मुफ्त है और गोपनीय भी। बच्चे को एचआईवी से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है।
1: एक कदम जिंदगी की ओर।
2: जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी फरेबी चाल चलनी है चल लो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए तो उस समय हैरान मत होना, उस समय परेशान मत होना, उस समय घबराना मत, क्योंकि जो आपने किया है अगर छल किया है, कपट किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो कई गुना होकर आपके पास जब लौटेगा उस समय आश्चर्य मत करना, क्योंकि

कि कर्म की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा। कर्म के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। जय बिहारी जी के।

0: भैया, ये आप सबने हेलमेट क्यों पहना है? ये तो बाइक वाला हेलमेट है ना।
1: अब आप नहीं पहन रहे तो सोचा हम ही पहन लेते हैं।
2: असलियत में हेलमेट किसको शोभा देता है ये तो सबको पता है। बाइक चलाते वक्त सर बचाएं, हेलमेट पहने। वेयर अ हेलमेट ऑलवेज बिकॉज हेलमेट सेव्स।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: सुबह से मुंह फुला के घूम रही है ये।
6: मेरी बीवी को पता चल गया मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
5: किससे?
6: वो मुझे भी नहीं पता, वो बस इसे ही पता है, रात को सपने में देखा था ना।

0: श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेडी जो कि सचिन कपूर। तो श्रोताओ देखिए आए दिन हिमाचल प्रदेश में जो है वो चिट्टे को लेकर जो है वो कोई ना कोई ज़रूर शख्स जो है वो पकड़ा जा रहा है और ये पुलिस का अभियान है, ये हिमाचल पुलिस का अभियान है और इस अभियान के तहत हज़ारों युवा जो हैं वो पुलिस की चपेट में आए हैं इस चिट्टे के नशे के कारण। तो आप सभी से एक ही विनती है कि आप सभी जो है वो बिल्कुल नशा त्याग दीजिए क्योंकि नशा जो है वो एक धीमा जहर है श्रोताओं, ये जहर आपके शरीर को धीरे धीरे नष्ट करता है। आप सभी बहुत सारे श्रोता हैं जो इस बात का जो है वो मूल समझेंगे, इस बात का असर समझेंगे कि नशा जो है वो धीमा जहर है जो आपको धीरे धीरे समाप्त करता है। बहरहाल श्रोतों 7:45 हो गए हैं और अब वक्त हो गया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में प्रादेशिक समाचारों का।
1: अपना रही है राज्य सरकार, प्रदेश भाजपा का आरोप, पेपर लीक मामले पर राजनीति कर रही कांग्रेस, सड़क पर हिंसा व टकराव का माहौल बनाकर लोकतंत्र को किया शर्मसार। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, पंचायत जन प्रतिनिधि लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी, विकास कार्यों में पंचायतों की अहम भूमिका। और प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी, भूस्खलन से 136 सड़क मार्ग अवरुद्ध। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार सड़क सुरक्षा के प्रति सक्रिय व वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 6.5% की कमी आने के बावजूद सरकार सड़क सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने व दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से सरकार ने लोक निर्माण विभाग के अधीन आने वाली सड़कों के लिए सड़क सुरक्षा ऑडिट नीति लागू करने को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति के तहत किसी भी सड़क परियोजना के 5 महत्वपूर्ण चरणों में सड़क सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य में दुर्गम भूभाग, तीखे मोड़ और प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियां अतिरिक्त जोखिम उत्पन्न करती हैं। ऐसे में सड़क सुरक्षा एक गंभीर सार्वजनिक चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सड़क नेटवर्क को अधिक सुरक्षित, सक्षम व सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक के मामलों में दोषियों को शीघ्र व कठोर दंड दिलाने के लिए एक और बड़ा निर्णय लिया है। बिंदल ने कहा कि पेपर लीक के सभी मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाई जाएगी ताकि मामलों का त्वरित निस्तारण हो और दोषियों को जल्द से जल्द सख्त सजा मिल सके। बिंदल ने कांग्रेस पर युवाओं के भविष्य पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस संसद में चर्चा से भाग रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता सड़क पर हिंसा व टकराव का माहौल बनाकर लोकतंत्र को शर्मसार कर रहे हैं।
2: नीट के पेपर लीक को लेकर श्री नरेंद्र मोदी की सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर गंभीर है। पेपर लीक होने के तुरंत बाद सीबीआई ने अपना काम शुरू किया, दोषियों को जेल में डाला और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर दोषियों को सजा दी जाए, आंदोलन छात्रों का रहा, उसके प्रति सरकार पूरी तरह संवेदनशील रही, परंतु राजनीतिक दलों ने राजनीतिक साधन के लिए इस आंदोलन को हाईजैक किया।
1: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक जैसे गंभीर अपराध पर स्पष्ट संदेश दिया है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि ये देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा करने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी व सुरक्षित बनाने के लिए लगातार कदम उठाए हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुक्खू सरकार का रवैया इसके बिल्कुल विपरीत रहा है और मुख्यमंत्री दोषियों को बचा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा है कि भाजपा देश के युवाओं व छात्रों के आक्रोश का सामना नहीं कर पा रही है और अपनी नाकामियों व विफलताओं को छुपाने का असफल प्रयास कर रही है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि सत्ता के बल पर युवाओं, छात्रों और विपक्षी नेताओं की आवाज को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को नीट व CBSE के पेपर लीक मामलों में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए आंदोलनरत छात्रों की मांगों को मानना चाहिए। विनय कुमार ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि पंचायत जनप्रतिनिधि लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी हैं और गांव के विकास में पंचायतों की अहम भूमिका है। ऊना जिला में हरोली विधानसभा क्षेत्र के नव निर्वाचित प्रधानों और उप प्रधानों के सम्मान में आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। मुकेश अग्निहोत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से जनता को साथ लेकर पारदर्शिता और समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क और जनकल्याण से जुड़े सभी क्षेत्रों में विकास कार्य निरंतर जारी रहेंगे। इस दौरान सभी नव निर्वाचित पंचायत जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र में विकास को नए आयाम देने का संकल्प भी लिया। प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है, जिससे कई स्थानों पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी वर्षा के चलते कई स्थानों पर हुए भूस्खलन से 136 सड़क मार्ग अवरुद्ध हैं और 64 ट्रांसफार्मर व 375 पेयजल आपूर्ति योजनाएं भी ठप हैं। उधर कांगड़ा जिला की बोह घाटी के गढ़गुन और स्पेड़ा गाँव में बीते दिनों हुई बादल फटने की घटना से 25 घर पूरी तरह नष्ट हो गए, जबकि कई अन्य मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया से दूरभाष के माध्यम से आपदा से हुए नुकसान की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों से भी फोन पर बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उधर चंबा जिला में साच पास मार्ग, सतरुंडी नाला, रानीकोट व कार्थ नाला में बादल फटने से हुई क्षति के कारण सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है। इसके अलावा बट्टी दी हट्टी, दुर्गहट्टी, धरवाला व दुनाली मार्ग पर लगातार पत्थर गिरने व भूस्खलन के खतरे को देखते हुए एहतियात के तौर पर इसे वाहनों की आवाजाही के लिए बंद किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी जिले में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता व पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा है कि राज्य सरकार सच बोलने वालों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है, जबकि भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि करीब 2.5 साल पहले बनकर तैयार हुए हमीरपुर मेडिकल कॉलेज का भवन आज भी बंद पड़ा है और बच्चे अस्थायी जगह पर चल रहे कॉलेज में पढ़ने को मजबूर हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के पास बन रही PG बिल्डिंग पर सवाल उठाते हुए इसके लिए ओपन टेंडर करने की सरकार से मांग की है। सिरमौर जिले की संगड़ा पंचायत के रेणुका बांध डूब क्षेत्र से जुड़े लोगों ने विकास कार्यों को अनुमति प्रदान करने की मांग उठाई है। पंचायत के प्रधान तपेंद्र सिंह राणा ने पंचायत में 2 वार्ड रेणुका बांध डूब क्षेत्र के दायरे में आ रहे हैं और वहां सेक्शन 4 लागू होने के कारण कोई भी विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। पंचायत के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों को लेकर जिला उपायुक्त प्रियंका वर्मा से मुलाकात कर लंबित कार्यों को पूरा करवाने का आग्रह किया है।
3: हमारी जो प्रमुख समस्याएं थी जिन पर हमने आज डीसी मैडम को ज्ञापन भी सौंपे। मुख्य रूप से जो हमारा मुद्दा था, बांध प्रभावित हमारा क्षेत्र है उसमें से हमारे दो वार्ड आते हैं, मेंटेनेंस वर्क उसमें होने थे, उसमें जो दिक्कतें आ रही है, सेक्शन 4 लगा होता है जैसे बांध प्रभावित क्षेत्र है उसमें हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हो सके, इसके लिए डीएम की परमिशन चाहिए होती है। मैडम ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई समाधान निकाला जाएगा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित व कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सड़क सुरक्षा के प्रति सक्रिय व वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना रही है राज्य सरकार। प्रदेश भाजपा का आरोप, पेपर लीक मामले पर राजनीति कर रही कांग्रेस, सड़क पर हिंसा व टकराव का माहौल बनाकर लोकतंत्र को किया शर्मसार। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, पंचायत जनप्रतिनिधि लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी, विकास कार्यों में पंचायतों की अहम भूमिका। और प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी, भूस्खलन से 136 सड़क मार्ग अवरुद्ध। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
0: श्रोता एफ एम एंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला, आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे रेडियो जो कि सचिन कपूर। तो श्रोताओं, अब वक्त हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का। कहते हैं कि जाते जाते एक प्यारा सा गीत आप सभी को ज़रूर सुनाएंगे हम, चांदसी महबूबा हो मेरी। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसे मैंने सोचा था, ये गीत आप तक हम ज़रूर पहुँचाएंगे। आपकी भी कोई ना कोई महबूबा जो है वो ज़रूर होगी जो आपका इंतज़ार कर रही होगी। बिल्कुल, तो ये गीत आप तक पहुँचाएंगे। और कहते हैं ना कि अगर सब कुछ मिल जाए ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करेंगे, अगर सब कुछ मिल जाए ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करेंगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो ज़िंदगी जीने का मज़ा देती हैं श्रोताओं। और इसी पे मुझे एक और शायरी जाते जाते, क्योंकि 6 से लेकर 8 तक जानकारियों का पिटारा चलता रहता है, कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता, उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो। और कहते हैं कि पागल कैसे होते हैं, पागल कैसे होते हैं, हमें देखो जरा हमारे जैसे होते हैं। ख्वाबों का धंधा करते हो, ख्वाबों का धंधा करते हो, कितने पैसे होते हैं। हमारे काम तो खुदा करता है, हमारे काम तो खुदा करता है, तुम्हारे यार वैसे ही हो जाते हैं, तुम्हारे यार वैसे ही होते हैं। तो चलिए जी, इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं शायरियों के साथ मैं सचिन कपूर लेता हूँ आप सभी से अलविदा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रेडियो गुंजन में आरजे सचिन कपूर को यूं ही सुनते रहिए और सुनाते रहिए। नमस्ते धर्मशाला।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सचिन है।
2: पांच YouTube वीडियो को लाइक करके पांच लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
2: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
2: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए। इट मीन्स ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
2: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
3: क्या बात है यार।
4: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
2: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
4: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। कोई भी अजनबी अगर आपको ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करने के लिए कहें तो उसे बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना पूरी जानकारी के कोई भी वित्तीय लेन देन ना करें और उनकी लालच भरी बातों में तो बिल्कुल ना फंसें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
5: अब उठो, देश के भाग जगाने हैं आपको। निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं आपको। अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है। अब ठान के स्वच्छता की ज्योत जागी है। स्वच्छता की ज्योत जागी है।

0: एचआईवी कभी न दो। अगर आप मां बनने वाली हैं, तो एचआईवी टेस्ट जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में सलाह और एचआईवी टेस्ट मुफ्त है और गोपनीय भी। बच्चे को एचआईवी से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है।
1: एक कदम जिंदगी की ओर।
2: जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी फरेबी चाल चलनी है चल लो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए तो उस समय हैरान मत होना, उस समय परेशान मत होना, उस समय घबराना मत, क्योंकि जो आपने किया है, अगर छल किया है, कपट किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो कई गुना होकर आपके पास जब लौटेगा उस समय आश्चर्य मत करना, क्योंकि कर्म की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा। कर्म के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। जय बिहारी जी के।

0: भैया, ये आप सबने हेलमेट क्यों पहना है? ये तो बाइक वाला हेलमेट है ना।
1: अब आप नहीं पहन रहे तो सोचा हम ही पहन लेते हैं।
2: असलियत में हेलमेट किसको शोभा देता है ये तो सबको पता है। बाइक चलाते वक्त सर बचाएं, हेलमेट पहनें। वेयर अ हेलमेट ऑलवेज बिकॉज हेलमेट सेव्स।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: सुबह से मुंह फुला के घूम रही है ये।
6: मेरी बीवी को पता चल गया मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
5: किससे?
6: वो मुझे भी नहीं पता, वो बस इसे ही पता है, रात को सपने में देखा था ना।

0: ऑडियो जंगल।
1: नमस्कार दोस्तों, 91.9 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो मंचन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन रुचिता के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। राज्यपाल कविंद्र गुप्त, राष्ट्रीय लक्ष्य से पहले टीवी मुक्त होगा हिमाचल। HPU के विद्यार्थियों और शिक्षकों को एक्सपोजर विजिट पर भेजेंगे, शुरू होंगे नए कोर्सेज। खेल बनेगा हथियार, हर पंचायत में पहुंचेगा चिट्टा मुक्त अभियान। स्वच्छ और हरित विद्यालय रेटिंग में प्रदेश के 11 स्कूलों को राष्ट्रीय सम्मान। अब समाचार

0: ऑडियो जंगल।
1: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लोक भवन में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत चल रहे टीबी मुक्त भारत अभियान 2.0 की उच्च स्तरीय समीक्षा की। उन्होंने राज्य की नवाचार पहलों और जन केंद्रित दृष्टिकोण की सराहना करते हुए विश्वास जताया कि हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय लक्ष्य से पहले ही टीबी मुक्त राज्य बनने का गौरव हासिल कर लेगा। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने स्पष्ट किया कि टीबी उन्मूलन सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक सामाजिक जन आंदोलन है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और स्वास्थ्य विभाग को कड़े निर्देश दिए कि आयुष्मान आरोग्य शिविरों में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ाई जाए, साथ ही उच्च जोखिम वाले समूहों को समय पर छाती के एक्सरे व निःशुल्क जाँच के लिए प्रेरित करने के लिए जागरूकता अभियानों को और अधिक तेज किया जाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कोर्स शुरू करने के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को 5 करोड़ रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की। उनका कहना है कि भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप HPU में नए युग के कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों व शिक्षकों को भी एक्सपोजर विजिट पर भेजा जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि एक्सपोजर विजिट पर भेजने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से व्यवस्था की जाएगी और इसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। उनका कहना है कि आने वाले समय में HPU को ग्रीन हाइड्रोजन के लिए नोडल एजेंसी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त भारत मुक्त अभियान की शुरुआत की। ये राज्यव्यापी पहल खेलों और युवा भागीदारी के माध्यम से नशे की समस्या से निपटने के उद्देश्य से शुरू की गई। इसका उद्देश्य चिट्टा जैसे मादक पदार्थों के खिलाफ एक सशक्त सामाजिक जन आंदोलन खड़ा करना है। अभियान के तहत 8 नगर निगमों, 29 नगर परिषदों तथा 39 नगर पंचायतों में भी जागरूकता कार्यक्रम चलेंगे। विशेष रूप से नशे से सर्वाधिक प्रभावित 235 पंचायतों में गहन अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं, जागरूकता कार्यक्रम और सामुदायिक संपर्क अभियान आयोजित किए जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने की दिशा में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गाइड कांगड़ा धर्मशाला में आज DLED प्रशिक्षुओं एवं अध्यापकों की सहभागिता से व्यापक पौधारोपण अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम की विशेषता ये रही कि प्रत्येक 2 DLED प्रशिक्षुओं ने एक अध्यापक के साथ मिलकर एक पौधारोपित किया। इससे प्रशिक्षुओं में पर्यावरण संरक्षण के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने का प्रभावी प्रयास किया गया। मुख्य अतिथि श्री भाग सिंह ने स्वयं डाइट परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार पर देवदार का पौधा रोपित कर अभियान का शुभारंभ किया तथा सभी को पौधों के संरक्षण का संकल्प भी दिलाया। इन पौधों से भविष्य में परिसर की हरियाली बढ़ने के साथ साथ जैव विविधता के संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को भी मजबूती मिलेगी। जिला प्रशासन शिमला द्वारा 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन बजट भवन शिमला में किया जाएगा। समारोह में कारगिल युद्ध के अमर शहीदों एवं वीर सैनिकों के अदम्य साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धा पूर्वक नमन किया जाएगा। समारोह के दौरान कारगिल युद्ध के वीर सैनिकों के अद्वितीय शौर्य एवं राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को नमन किया जाएगा तथा उन्हें सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान कारगिल विजय दिवस पर आधारित एक वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया जाएगा, साथ ही उपस्थित सभी लोगों को राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने के लिए शपथ भी दिलाई जाएगी। समारोह में कारगिल युद्ध के वीर योद्धा एवं पूर्व सैनिक अपने अनुभव साझा करेंगे, जिससे युवाओं एवं आम नागरिकों को देशभक्ति और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा मिलेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग SHVR 2025-26 में हिमाचल प्रदेश के 11 विद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर पर सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट के लिए चयन हुआ है। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच राष्ट्रीय मेरिट सूची में स्थान बनाना प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। शिक्षा विभाग ने भारतीय शतरंज के इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। देश में पहली बार राज्य स्तरीय बालिका शतरंज खेल छात्रावास CRL स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स जुबल की स्थापना से एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस छात्रावास से अब हिमाचल में हिमाचल भी शतरंज के नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी तैयार करेगा। इसके लिए टीम का चयन 21 जुलाई को हुआ है। अभी टीम में कितने खिलाड़ी चुने गए और टीम में किस किस जिले से कितने खिलाड़ी चयनित हुए हैं, इसकी भी जल्द ही घोषणा की जाएगी। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर। हर घर

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सचू ने
2: 5 YouTube वीडियो को लाइक करके 5 लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
2: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
2: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मीन्स ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
2: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
3: क्या बात है यार।
4: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
2: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
4: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। कोई भी अजनबी अगर आपको ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करने के लिए कहें तो उसे बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना पूरी जानकारी के कोई भी वित्तीय लेन देन ना करें और उनकी लालच भरी बातों में तो बिल्कुल ना फंसें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
5: अब उठो, देश के भाग जगाने हैं आपको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं आपको। अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है। अब ठान के स्वच्छता की ज्योत जागी है, स्वच्छता की ज्योत जागी है।

0: एचआईवी कभी न दो। अगर आप माँ बनने वाली हैं, तो एचआईवी टेस्ट जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में सलाह और एचआईवी टेस्ट मुफ्त है और गोपनीय भी। बच्चे को एचआईवी से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है।
1: एक कदम जिंदगी की ओर।
2: जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी फरेबी चाल चलनी है चल लो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए तो उस समय हैरान मत होना, उस समय परेशान मत होना, उस समय घबराना मत, क्योंकि जो आपने किया है अगर छल किया है, कपट किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो कई गुना होकर आपके पास जब लौटेगा उस समय आश्चर्य मत करना, क्योंकि कर्म की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा। कर्म के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। जय बिहारी जी के।

0: अरे भैया ये आप सबने हेलमेट क्यों पहना है? ये तो बाइक वाला हेलमेट है ना।
1: अब आप नहीं पहन रहे तो सोचा हम ही पहन लेते हैं।
2: असलियत में हेलमेट किसको शोभा देता है ये तो सबको पता है। बाइक चलाते वक्त सर बचाएं, हेलमेट पहने। वेयर अ हेलमेट ऑलवेज बिकॉज हेलमेट सेव्स।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्यों सुबह से मुंह फुला के घूम रही है ये?
6: मेरी बीवी को पता चल गया मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
5: किससे?
6: वो मुझे भी नहीं पता, वो बस इसे ही पता है, रात को सपने में देखा था ना।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सचिन है।
2: पांच YouTube वीडियो को लाइक करके पांच लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
2: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
2: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मीन्स ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
2: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
3: क्या बात है यार।
4: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
2: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
3: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा

0: नहीं करना चाहिए? SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। कोई भी अजनबी अगर आपको ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करने के लिए कहें तो उसे बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना पूरी जानकारी के कोई भी वित्तीय लेन देन ना करें और उनकी लालच भरी बातों में तो बिल्कुल ना फंसें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
1: अब उठो, देश के भाग जगाने हैं आपको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं। अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है। अब ठान के मुद्दे स्वच्छता की ज्योत जागी है, स्वच्छता की ज्योत जागी है।
2: दम दमक दम दम दम के दा इंडिया।

0: पर एचआईवी कभी न दूं। अगर आप मां बनने वाली हैं, तो एचआईवी टेस्ट जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में सलाह और एचआईवी टेस्ट मुफ्त है और गोपनीय भी। बच्चे को एचआईवी से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है।
1: एक कदम जिंदगी की ओर।
2: जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी फरेबी चाल चलनी है चल लो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए तो उस समय हैरान मत होना, उस समय परेशान मत होना, उस समय घबराना मत, क्योंकि जो आपने किया है, अगर छल किया है, कपट किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो कई गुना होकर आपके पास जब लौटेगा उस समय आश्चर्य मत करना, क्योंकि कर्म की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा। कर्म के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। जय बिहारी जी के।

0: अरे भैया ये आप सबने हेलमेट क्यों पहना है? ये तो बाइक वाला हेलमेट है ना।
1: अब आप नहीं पहन रहे तो सोचा हम ही पहन लेते हैं।
2: असलियत में हेलमेट किसको शोभा देता है ये तो सबको पता है। बाइक चलाते वक्त सर बचाएं, हेलमेट पहने। वेयर अ हेलमेट ऑलवेज बिकॉज हेलमेट सेव्स।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्यों सुबह से मुंह फुला के घूम रही है ये?
6: मेरी बीवी को पता चल गया मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
5: किससे?
6: वो मुझे भी नहीं पता, वो बस इसे ही पता है, रात को सपने में देखा था ना।

सचिन रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो। हम सबका यही है प्रयास, दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज़। सो स्टे ट्यून विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो भंजन धर्मशाला और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो आइए श्रोताओं करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो भंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना। श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।